नमस्कार, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की चौथी तिथि। तदनुसार आज दिनांक 25 मई सन 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिमी चैनल से एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में कहीं पर भी ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

दोस्तों, सुबह 9:10 से आप सुनेंगे रामचरितमानस गान। 9:20 से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम पंदना और 9:40 से आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत। 10 बजे से आप सुन पाएंगे गाने पुराने जमाने के और 10:30 से आप सुनेंगे गाने ने तराने ने। 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: दोस्तों आज शाम 5 बजे से आप सुन पाएंगे राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2025 वितरण समारोह का सीधा प्रसारण। समय एक बार पुनः नोट कर लीजिए, शाम 5 बजे से 6:05 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 6:20 से आप सुन पाएंगे लोकगीत और वचनों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बनारसी लाल जौहरी और ओम प्रकाश मेहरा के गाए कुछ लोकगीत। खेतीबाड़ी का समय रहेगा शाम 7 बजे से और 7:30 से आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 8 बजे से आप सुनेंगे दिल से सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम विविधा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक जल की एक पतिव्रता। ये कार्यक्रम विविधा का समय रहेगा रात्रि 8:30 से। दर्द भरे गीत रात्रि 9 बजे से सुनेंगे और 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी नागपुर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मुख्य समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के 2 दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृह मंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। वहीं गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक्सप्रेस वे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए 4,938 करोड़ रुपए के ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उन्होंने कोटपूतली किशनगढ़ ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के निर्माण को गति देने के लिए ये ऋण स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री ने कल राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण कॉरपोरेशन RSRDC की बैठक ली। उन्होंने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली सड़क के अपग्रेडेशन और केकड़ी बाईपास निर्माण के ऋण प्रस्ताव भी मंजूर किए। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में चौथी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रुपए और डीजल लगभग 105 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की आखिरी तारीख आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तारीख आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्दी ही दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत आज जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जल स्रोतों, तालाबों और नदियों पर स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया जाएगा। चूरू, सवाईमाधोपुर, अलवर, हनुमानगढ़, बारा, अजमेर, बाड़मेर, पाली, करौली और भरतपुर सहित अन्य जिलों में जल पूजन, आरती और दीपदान के कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में पेयजल व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए कल राज्य स्तरीय विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान 519 टीमों ने गांव-गांव पहुंचकर पेयजल स्रोतों और पानी की आपूर्ति व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और 3,427 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। इस दौरान करीब 725 हैंडपंप और 400 पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए। वहीं 1100 से ज्यादा अवैध जल कनेक्शन हटाए गए। अभियान का उद्देश्य गर्मी के मौसम में ये अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पानी चोरी और

0: अवैध जल कनेक्शन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समारोह दो चरण में होगा। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। हीटवेव से बचाव और आपदा प्रबंधन विषय पर आज से जयपुर में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य हीटवेव के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी।
1: इस कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं, विशेषकर आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा कई रिसर्च संस्थान आदि के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसमें हीट वेव से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव और उनके बचाव उपाय पर गहनता से चर्चा की जाएगी और हीट एक्शन प्लान और हीट से भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस पर मंथन किया जाएगा।
0: प्रदेश के 10 शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री से ऊपर रहा। वहीं 9 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। वहीं कोटा और फलौदी 32 डिग्री से अधिक तापमान के साथ रातें सबसे गर्म रही। राजधानी जयपुर में भी दिन और रात काफी गर्म बने हुए हैं। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री से ऊपर मापा गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। कई हिस्सों में दिन का पारा 45 से 46 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है। राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन कल अलवर में हुआ। इसमें वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। इस प्रतियोगिता में अलवर की बालिका टीम विजेता रही। वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

मानसगान, हम आकाशवाणी नागौर के छिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

मुकेश और हरिओम शरण और नंदिनी शरण की आवाज़ों में चंद भक्ति रचनाएं। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से विदेश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम केयर फिल्मी गीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ एल्बम सॉन्ग्स। सबसे पहले सुनते हैं अदनान सामंग की आवाज़ में ये एल्बम सॉन्ग।

अदनान सामी की आवाज में ये आप सुन रहे थे एल्बम लव इन से ये कार्यक्रम का पहला गीत। आप सुनते हैं मेड इन इंडिया एल्बम से एलिसा चिना की आवाज में ये अगला एल्बम सॉन्ग।

दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं खैर गैर फिल्मिंग गीत के अंतर्गत एल्बम सॉन्ग। अगला सॉन्ग सुनते हैं, एल्बम का नाम है ना जाने। इसको आवाज़ दी है नितिन पाली ने।

चलिए दोस्तों, कार्यक्रम का अगला और आखिरी एल्बम सुनते हैं। आवाज़ दी अदनान सामी ने और एल्बम का नाम है आई लव।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कुछ एल्बम सॉन्ग। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं।

प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए गाने पुराने जमाने के। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं फिल्म दाग का गीत। इस गीत को आवाज़ दिया लता मंगेशकर और उनका साथ दे रहे हैं मीनू पुरुषोत्तम ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और शायर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: दोस्तों, कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के का अगला गीत सुनते हैं फिल्म अब्दुल्ला से। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म आशा से। इस गीत को आवाज दी है, माफ कीजिएगा, इस गीत का फिल्म का नाम है लोफर और इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले ने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिमनी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में कहीं पर भी ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गाने नए तराने नए। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आशिकी 2 के इस गीत से। इस गीत को आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये जवानी है दीवानी, ये है कार्यक्रम की अगली फिल्म का नाम। इस गीत को आवाज दी है बिन्नी दयाल और शेफाली ने।

0: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल और कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने ने तराने ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। इस गीत को आवाज़ दिए सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और इन दोनों का साथ दे रही है नीति मोहन।

दोस्तों ये फिल्मिंग गाने इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है एक विलन। इस गीत को आवाज़ दी है अंकित तिवारी ने।

दोस्तों, कार्यक्रम गाने नए तराने नए, इस कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म दिलवाले से। इस गीत को आवाज़ दिए अरिजीत सिंह और उनका साथी रही हैं अंतरा।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने ने तराने ने। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ सुने या यार और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में कहीं पर भी ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए सुन रहे हैं। इस समय दिन के ठीक 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित होगा।
1: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

कभी किसी की तारीफ की है? कर लीजिए। अगर तारीफ किसी शहर से हो तो कुछ ऐसी ही गजल बनती है। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं खूबसूरत एल्बम की है गजल, तलत अजीज की आवाज में, आनंद बख्शी के पुल और समीर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज में हम तो हैं परदेश में, यह गजल राही मासूम रजा ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे अ गिफ्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड गजल्स। इस एल्बम से अनूप जलोटा की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को, जिसे लिखा है मुनीर ने। आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। द खजाना कॉन्सर्ट, पेनाज मशानी की आवाज में मधुरानी के संगीत के साथ।

याद में तेरी इस खूबसूरत सी नज्म के बाद आइए सुनते हैं अगली नज्म, गजल उसने छेड़ी, इस एल्बम से चंदन दास की आवाज में, निदा फाजली के बोल और चंदन दास के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से चित्रा सिंह की आवाज में इफ्तिकार माम सिद्दीकी ने इसे लिखा और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा पंकज उदास की आवाज में, जिसे संगीतबद्ध किया पंकज उदास ने ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला नगमा, जो कि होगा तलत अजीज की आवाज में।

हम सुन रहे थे नज्म आगाज द बिगनिंग सोनाली जलोटा. इस एल्बम से सोनाली जलोटा की आवाज में फैयाज जयपुरी के बोल और रूप कुमार राठौर के संगीत के साथ. कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है. आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। दो पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटे की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए शुरुआत करते हैं यादों की महफिल का। ये प्यारा सा गीत मुकेश ने गाया है, राम अवतार त्यागी ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है और फिल्म है जिंदगी और तूफान।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोलो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की यादों की महफिल हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, आए दिन बहार के फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।
6: मेरे दिल से

हम सुन रहे थे गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हम सुन रहे थे ये गीत आशा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत के साथ। अब वक्त हो चला है कि ले लें एक छोटा सा विराम और सुनवा दें आपको ये संदेश यादों की महफिल में।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं अर्पण अपनापन फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल। और हम बता चुके हैं कि हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजे हुए गीतों को।

कार्यक्रम यादों की महफिल का सुनते हैं अंतिम नगमा, जो कि है अमृत फिल्म से मनहर उदास अनुराधा वॉडवाल की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि ये प्रसारण आप उन्हें सुन पाएंगे दिन में 1:05 से। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की।
1: मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आज गंगा दशहरे के दिन हमने ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है। आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है और हमको जल को बचाने का भी काम करें और हम जल को संरक्षण करते हुए स्वच्छता का भी हमने इसमें रखा है कि हमारा जल स्वच्छ रहे। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हुए हम इस अभियान को पूर्ण करेंगे।
0: अभियान के शुभारंभ के मौके पर महिलाओं की ओर से कलश यात्रा भी निकाली गई। सवाई माधोपुर में सूरवाल बांध पर आयोजित समारोह का शुभारंभ कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने किया। उन्होंने धरती पर बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को जल संरक्षण की भी शपथ दिलाई। उधर सैलूंबर में सरणी नदी का पूजन कर स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। जैसलमेर में सरपाल से प्रभात फेरी और कलश यात्रा की शुरुआत हुई और प्रेरक नारों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया गया।

0: गंगा दशमी से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों, नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की है। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समारोह 2 चरण में होगा। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। प्रदेश से इस बार 3 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। इनमें अलगोजा वादक तगाराम भील, भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती और समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज शामिल है। हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरी दुनिया से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग सऊदी अरब के मक्का शहर से 5 दिन के इस सफर की शुरुआत करेंगे और मीना में इकट्ठा होंगे। इसके बाद जायरीन कल तड़के अराफात के मैदान की तरफ जाएंगे। इस साल हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। वहीं राजस्थान से इस बार करीब 4,500 लोग हज के मुकद्दस सफर पर गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में 4थी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ सुन AIR और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में कहीं पर भी सुन रहे हैं आप ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए। इस समय दिन का 1:05 हुआ है। चलिए वापस चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की तरफ।
2: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: यह गीत लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। एक ने लिखा कि इस गाने के गीतकार हैं संतोष आनंद, जो इतने आनंद से गाने लिखते हैं कि श्रोता को संतोष हो जाता है सुनकर। बिल्कुल सही बात है। हमारे दूसरे श्रोताओं ने भी इसका उत्तर दिया है और कई लोगों की भारत में जो उन्होंने गीत पसंद किए थे वह उन गीतों में से एक है। और हमारे श्रोता ने लिखा है संतोष आनंद जी, जो बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत उनका फेवरेट गीत है, तो हमें बहुत खुशी है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके पसंदीदा गीतों में से यह गीत है और जब भी सुनते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। जीवन की सच्चाई यही है और सच्चाई के साथ अगर अश्रुधारा आती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि ये जो गीत हैं ये बड़े खूबसूरत से हैं और इन गीतों में से उन्होंने कई सारे गीत पसंद किए, पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद जो गीतकार हैं ये हमारे पास के ही पिलखुआ कस्बे के रहने वाले हैं और व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं ये उनसे और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। कितनी अच्छी बात है ना, आप सब एक अच्छे महान व्यक्तित्व से मिल पाते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत सारे गीत पसंद हैं और जिंदगी की फिलॉसफी की व्याख्या करता है ये गीत, लगभग सभी गीतों की महफिल की जान होती है ये गीत।
1: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनवा रहे हैं, बस इतना बताइएगा ये जो अगला गीत आप तक आ रहा है, इस अगले गीत के गायक कलाकार कौन है? और बहुत खूबसूरत सा गीत है, और बस बताते रहिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन सा है आपका। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और बतानी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म, जो संगीत की यात्रा शुरू की, उसकी पहली फिल्म कौन सी है बताइएगा जल्दी से। पहली फिल्म का नाम बता दीजिए जो उन्होंने पहली फिल्म बनाई है, और साथ ही इस गीत के गायक कलाकार।

हम सुन रहे थे ये गीत नाग फिल्म से साहिर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इस गीत को गाया किसने है, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फिल्म दाग का ये गीत है जो सही लिखा है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। गायक हैं आभास कुमार गांगुली, आभास कुमार गांगुली मतलब किशोर कुमार। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं से हमने एक प्रश्न और पूछा था कि उनकी पहली फिल्म कौन सी है, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि एलपी की पहली फिल्म पारसमणि 1963 की, इसी से उन्होंने डेब्यू किया था। जी, बाबू भाई मिस्त्री की ये फिल्म जिसने उनके जीवन के इस संगीतमय जीवन के इस करियर की शुरुआत की थी। और उसके साथ ही जो हमने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा उसका उत्तर आप सभी ने बहुत सटीकता से बहुत अच्छे से दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर हमें भेजा करते हैं, तो हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मौसम हमें नई परिभाषा चुनने का सुख देता है। बदलते मौसम के साथ मन की गांठें बदलती हैं, खुलती रहती हैं। बर्फीली झील पर कोई बादल सरक कर पूरे वजूद पर छा जाता है तो लगता है खत लिखूं, मगर कागज कलम हाथ में आते ही सब भुला जाता है। जीवन का सार बस इतना ही है कि यह प्यार का नगमा है। जीवन का सच्चा सुख छोटी छोटी बातों में है, एक मुस्कान, शांति का पल और प्रियजनों का साथ। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है ना, और ऐसा ही साथ हम सबका बना रहे ये प्रार्थना भी हम ईश्वर से करते हैं। हम आपको अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं, और इस गीत को सुनवाते सुनवाते बस एक प्रश्न मन में आता है कि एक और गाना, यानी ये गीत नहीं है वह, लेकिन एक गीत है जो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने अपने गुरु को समर्पित किया है, उसमें उन्होंने अपने उन गुरु का नाम भी लिया है। तो जरा याद करें और बताएं कि कौन सा गीत था और किस गुरु के लिए वो समर्पित किया गया, जरूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत है आप सुनिए और बताइएगा कि ये आवाज कौन सी है। अगर आप गायक को पहचान पा रहे हैं तो गायक को पहचानिए भी। और दूसरा प्रश्न एक और हमने आपके साथ रखा है, वो बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है जो उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया और उन गुरु का नाम क्या है।

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमने कहा था कि अगर आप गायक की आवाज को पहचान लें तो हमें जरूर बताएं। तो आपने गायक कलाकार की आवाज को पहचाना और बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये जो गायक कलाकार है वो शैलेंद्र सिंह है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि एक गुरु को एक समर्पण दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा, जिनका नाम उन्होंने एक गीत में प्रयोग किया, तो वो गीत कौन सा है? तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना कि लक्ष्मीकांत प्यारे जी के गुरु का नाम एंथनी गोंसाल्विस है, जिसका जिक्र अमर अकबर एंथनी फिल्म में माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस इस गीत के साथ हुआ है। ये बात हमारे श्रोताओं ने पहचानी है और आपकी इस पहचान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ज्ञान इतना अच्छा है। और हमारे श्रोता बड़ा दुख लिख रहे हैं कि इंसान को किसी भी मौसम में चैन नहीं है। गर्मी में हाय, बरसात हो तो बहुत बारिश हुई है, और ठंड हो तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो देखिए, असर तो पड़ता ही है हमारे ऊपर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उन्होंने इस बात को लिखते हुए बताया है कि एंथनी गोंसाल्विस जो हैं वो उनके वायलिन के गुरु रहे हैं, प्यारे लाल के वायलिन गुरु एंथनी गोंसाल्विस, जो 50-60 के दशक में वो इंडिया के फेमस म्यूजिक अरेंजर थे और हर वाद्य यंत्र बजाते थे। जब अमर अकबर एंथनी के गाने के बोल लिखे जा रहे थे तो प्यारे लाल जी ने अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाने के बोल में एंथनी गोंसाल्विस नाम डलवा दिया। कितनी बढ़िया बात है कि कोई अपने गुरु को कितना प्यार कर सकता है, और यही बात यहाँ पर आई है और इतनी खूबसूरती के साथ आप सबने सजाया है। और अब हमारी इबारत को लेकर हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बदलते मौसम का प्रियतम की याद आना प्रवास जनित विरह या ऋतु विरह है, जहाँ प्रकृति का परिवर्तन प्रेमियों के हृदय में छिपी उत्कंठा को और अधिक तीव्र कर देता है। इसे ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन उस शाश्वत मिलन की तड़प को और बढ़ा देता है। विरह की पीड़ा प्रेम की पूर्णता और गहराई का प्रमाण बन जाता है। बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम का मिजाज जब बेईमान हो जाए तो आसमान में बादल भी मोहब्बत का इजहार करते प्रतीत होते हैं। खिड़की से आती हवा का झोंका और कागज कलम को छूता है और दिल अपने आप प्यार का नगमा लिखने लगता है। फिजा की मैं ऐसी मिठास घुल जाती है कि छुप गए सारे नजारे भी सितारों के आंगन में अपनी चमक बिखेरने लगते हैं। उस पल में प्रकृति प्रेम और एहसास मिलकर जीवन को एक सुंदर कविता बना देते हैं। कितनी अच्छी बातें आप लिखते हैं। और इन्हीं अच्छी बातों के बीच में मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। अगला गीत बड़ा प्यारा सा है। आप उस क्रम को मत तोड़िए जो मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि आपका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन है, कौन सा है, आप जरूर हमें बताइए, क्योंकि ये गीत जो है वो दिल को छूते हैं। अब मैं अगला गीत आपको सौंप रही हूँ। इस गीत के साथ में भी दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि ये जो गीत है, इस गीत को किस फिल्म से लिया गया है? जो गीत आप सुनने वाले हैं उसकी फिल्म का नाम बता दीजिएगा। और अब दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, कितने फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने जीते हैं संगीतकार के रूप में, बेस्ट संगीतकार के रूप में कितने मिले हैं, जल्दी से बताइएगा। और ये भी बताइए कि इस गीत के फिल्म का नाम क्या है।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये सुंदर सा नगमा, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके गीतों के साथ में, और हमने दो प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था कि ये जो गीत है वो किस फिल्म से है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लोफर फिल्म से है। और आप सब इस गीत को पसंद करते हैं ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। पर हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था, दूसरा प्रश्न ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार के रूप में कितनी बार फिल्मफेयर अवार्ड मिले, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया 7 बार। और बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपने हमें उत्तर दिए हैं। जैसे आपने हमें बताया कि 1964 में पारसमणि फिल्म के लिए, 1968 में मिलन के लिए, 1970 में जीने की राह के लिए, 1978 में अमर अकबर एंथनी के लिए, 1979 में सरगम के लिए, और 1979 में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सरगम के लिए, 81 में कर्ज के लिए, कई सारी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले। हालांकि 25 बार नॉमिनेट हुए और जीते 7 बार, ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। एक और प्रश्न मेरा आपसे था अगला गीत सौंपने के पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले ये संदेश जो है वो सुन लें और उसके बाद वापस जुड़ें इस धारा के साथ।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और इसी सफर में हम यात्रा कर रहे हैं बहुत सुंदर नगमों के साथ, और उन्हीं नगमों में हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी इबारतें लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आया मौसम सुहाना रे, ठंडी ठंडी हवा का तराना रे, कभी धूप कभी बारिश आई, प्रकृति ने सुंदर छटा सजाई, पेड़ पौधे झूमे प्यारे, मौसम लगे सबसे न्यारे। और ये बात लिखने के बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी मौसम के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीली प्रस्तुति, सुरीले गीतों से श्रोताओं को बाहर तेज धूप के बावजूद हमें मौसम का मिजाज जरूर बदला लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। जी, हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी भेजी है कि आज के फनकार कार्यक्रम में मैंने सुना कि लक्ष्मीकांत जी का जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था, इसीलिए परिवार वालों ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। आज आपने सुबह आज के फनकार सुना, ऐसे ही एक और कार्यक्रम है 7:45 पर आएगा स्मृतियों के स्वर। भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग है। आज शाम को 7:45 जरूर सुनिएगा स्मृतियों के स्वर। और आप जो विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, सुरीला सफर सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, तो इन्हीं उत्तरों और प्रश्नों के बीच में मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं क्या कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं उन्होंने सबसे अधिक गीत किससे गवाए हैं, यानी कौन सा गायक था जिन्होंने सबसे ज्यादा गीत गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए, आप जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूं, तो जरूर

हम सुन रहे थे जीने की राह फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आनंद बख्शी हैं। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक गीत किसने, यानी किसने, किस गायक या गायिका ने उनके लिए गाए हैं। तो हमारे श्रोताओं ने अंदाज़ा लगाया है कि कोई कह रहा है कि लता मंगेशकर ने ज़्यादा गाए हैं और कोई कह रहा है मोहम्मद रफ़ी ने ज़्यादा गाए हैं। तो आप भी विचार कीजिए, इस बात पर विचार करते रहिए, ज़रूर से ढूंढिएगा किसने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं

कि लता मंगेशकर ने सबसे ज्यादा 700 से अधिक गाने गाए हैं उनके लिए, ऐसा कहा जाता है। पर फिर भी आप भी खोजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न है तो प्रश्न तो रहना ही है जीवन में, ये प्रश्न रहना चाहिए ताकि आप उसका उत्तर ढूंढ सकें। ऐसा भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने लगभग 712 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए, बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो गाने और इन सब की जो बात है, इन सब के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं उनके साथ में, यानी दोनों ने साथ में आखिरी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए संगीत दिया था, जरूर से बताइएगा। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की साथ में आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और अगला गीत जो है उसके गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत। अगले गायक कलाकारों के नाम बताना है और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म जो साथ में उन्होंने की थी, जरूर से बताइएगा।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत को लेकर बहुत सारे उत्तर दिए हैं और लिखा है कि दो रास्ते फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि काजल लगाए दिन में रात हो गई ये तो बजना ही था, फिल्म दो रास्ते का युगल गीत जिसके बाजार में आने पर तहलका मच गया था। बिल्कुल सही बात है। और हमारा एक श्रोता, एक लड़का मुझे देखकर ये गाना गा रहा था, मेरी शादी हो गई, उसके दोनों बच्चे भी हो गए, 1994 की बात है, आज बरबस याद आ गई, उनासी भी आ गई, साथ में आपके पति देव भी मुस्कुरा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे परिवार को कितना खूबसूरत एक बहुत प्यारा सा समय देते हैं। और हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो अंतिम फिल्म है दोनों के साथ में, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अंतिम फिल्म मेरी बीबी का जवाब नहीं 2004 में आई थी, जो लक्ष्मीकांत के 1998 में निधन के बाद 6 साल बाद रिलीज हुई। यह फिल्म काफी समय से अटकी हुई थी और इसमें प्यारेलाल ने संगीत संयोजन पूरा किया। बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। आज हमारे बहुत कम कमेंट्स पड़े जा रहे हैं, ऐसा भी हमारे श्रोता ने शिकायत की, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, कमेंट लिए ही नहीं, आपने लिखे भी नहीं। तो चलिए हम अब चल रहे हैं आज के अंतिम गीत की तरफ। आप सबने अपना पसंदीदा गीत बताया था और हम अपना पसंदीदा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत बहुत प्यारा सा है और ये गीत हमने लिया है जीवन मृत्यु फिल्म से। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

और इसी के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं समाप्त होता है, पर उसके पहले हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम सब मानवीय जीव जंतु, समुद्री प्रजातियां, पेड़ पौधे सब कुदरत के गुलाम है। हमें कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए, गर्मी ठंड बारिश इन सबका ध्यान रखना चाहिए और जो कुछ कुदरत दे रही है उसका हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे सभी साथियों का भी यानी सभी प्राणियों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ये प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ कार्यक्रम सुरीला सफर से। नमस्कार।

दोस्तों, ये वो समय है जब परीक्षाओं के नतीजे आने लगते हैं। कुछ लोगों का जश्न होता है, कुछ का दिल जलता है। उनके नंबर मन के मुताबिक नहीं होते और उनका दिल टूट जाता है। अफसोस है कि हमारे यहाँ बच्चों पर सबसे ज्यादा अंक लाने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे रेस में दौड़ने वाले घोड़े के मानिंद बन जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए और बच्चों के साथ बैठ कर रिजल्ट डिस्कस कीजिए। उन्हें बताइए कि परीक्षा के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

जैसा कि हमने आपको समझाया, परीक्षाओं के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते। ये सच है कि 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं के नतीजों के आधार पर लोगों का करियर डिसाइड हो जाता है और उनकी जिंदगी का फैसला हो जाता है। बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है और उसके आधार पर वो अपना प्रदर्शन करता है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कतई नहीं की जानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी एक यात्रा है और दूसरे बच्चों की अपनी अलग यात्रा है। किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई में विषयों का निर्धारण भी उनकी दिलचस्पी के आधार पर ही होना चाहिए, न कि दुनिया में क्या चल रहा है या दूसरे बच्चे ने कौन सा विषय लिया है, इसके आधार पर इस बात का निर्णय किया जाए। अगर आप बच्चों को दबाव डालकर कोई विषय दिलवा देते हैं तो मुमकिन है कि इसका असर उसके प्रदर्शन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी बेकार हो जाए।

दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए जब विषय चुनने होते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उनकी दिलचस्पी क्या है, न कि दबाव डालकर उनकी रुचि के उलट विषय आपको उन्हें सिलेक्ट करवा देना चाहिए। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी जैसे नाम मात्र के विकल्प नहीं रह गए हैं, बल्कि बच्चों के सामने तरह तरह के क्षेत्र हैं और कोई भी बच्चा अपने मन चाहे क्षेत्र में जाकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। पर सवाल ये है कि उसके भीतर उस विषय की दिलचस्पी हो, कुछ करने का मादा हो, दुनिया को ये दिखा देने की जीत हो कि उसके भीतर प्रतिभा है और वो लीक से हटकर काम कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठकर मिलकर डिस्कस करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उन्हें अपने मन पसंद क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम, एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
4: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
5: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से

मुकेश कुमार बल। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

0: जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2 रुपये 61 पैसे और डीजल में 2 रुपये 71

0: पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गो में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता

0: प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकार्टे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे बसंत बहार फिल्म का ये गीत, भीमसेन जोशी मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है जलदीप फिल्म से। सुधा मल्होत्रा, स्नेहल भाटकर ने इसे गाया है, कैफ इरफानी ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसे संगीतबद्ध किया है।

एहसान सहारू का मत ले, एहसान सहारू का मत ले, खुद अपने मन को दीप बना, खुद अपने मन को दीप बना, सूरज से

तू बालक है, तू मालिक है, तेरी हंसी में लाख सवेरे है, तेरी हंसी में लाख सवेरे है, दो हाथों में तकदीर ली।

0: का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं,
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे चल रहा है, आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में।

हम सुन रहे थे आलम आरा फिल्म का यह गीत। आशा भोसले की आवाज में शेवन रिजवी ने इसे लिखा और ए आर कुरैसी ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चल रहा है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के हैं बोल, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ।
4: दत्त मुरलिक धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत ऐसे चंद तपन दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ दिग्नाथ

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आज का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जो कि है फिल्म फंटूश से आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देवर्मन का है संगीत।

0: और कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: सखी सहेली
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपका भी है और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
2: और हम सभी अपने श्रोताओं को सभी सखियों को सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, हाँ। ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है खेलते रहना है उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल रुकना नहीं है बस खेलते जाना है।
1: जी
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है जो हमारे जो शांति है उसके लिए बहुत जरूरी होता है।
1: जी।
2: और विधि इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की जो कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं।
2: जी हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब

0: परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ, सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है
0: हाँ बिल्कुल वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना
1: तो जी बिल्कुल, तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले
0: व्यंजन
1: हैं। जी
0: बिल्कुल, आज हम बिहार के व्यंजन की बात करेंगे
1: जी
0: जो है खाजा और रसिया।
1: जी तो खाजा तो हमने खाया है, रसिया
0: हाँ।
1: हमने नहीं खाया है, तो
0: रसिया हम सुनते भी हैं
1: जी
0: जो एक गा, गा, जो
1: बिल्कुल
0: गीत भी होते हैं,
1: जी,
0: लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है, तो
0: बिल्कुल
1: शायद खाने वाला भी बड़ा
0: बिल्कुल
1: मीठा
0: मीठा
1: होता
0: ही
1: होगा,
0: होता है ये
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
0: जी।
1: तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही है। और साथ ही हमारे जो श्रोता है उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित। कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो
1: अच्छा
0: लाए हैं वो
1: जी,
0: है प्रायश्चित, जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था, कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई, अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भर कर कटोरा कमरे के एक ऐसे

0: ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई, हाथ में पाटा लेकर। वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ये क्या हुआ? हाय राम, दया रे दया, बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई।
2: हैं?
1: लागत का है, सच्चो मर गई। हाय, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी,
2: ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना? हम तो रसोई न बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ,
3: कहती तो ठीक हो तुम सब। अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए, तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। अरे बहू, ये क्या कर डाला है?
1: अब इब का हुई अम्मा जी? हाँ, कहो तो पंडित जी को बुला लें हम।
3: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ, जाओ जल्दी से, जाओ जाओ पंडित जी को बुला लो।
0: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
4: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
0: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब बंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
3: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है, बताइए जरा।
4: हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई,

0: गंभीर हो गया।
1: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की मां। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
2: तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
0: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
1: रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है। अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
2: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
1: हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, बस। हरे कृष्ण।
3: हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
2: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए।
0: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
1: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की मां, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की मां, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हां, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण।
2: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना। पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
1: रामू की मां, एक तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है। इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण।
0: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
1: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की मां, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
2: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा।
1: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
2: अरे बाप, इतना सामान। अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हाँ,
1: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की मां, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
3: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
0: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा,
1: रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण।
2: सही

0: कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
1: रामू की मां, ये तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला।
0: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूं भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है?
1: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
0: अच्छा।
1: और 21 दिन तक दोनों बखत पांच पांच ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से पांच ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
0: ऐसा?
1: हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
2: हाँ ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं, पंडित जी के टोन तो देखो।
1: अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की मां, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए।
3: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
4: अरे अम्मा जी,
0: हाँ,
4: ये तो
0: क्या हुआ, बोलो तो।
2: अरे हुआ का,
4: अरे बताओ क्या बताएं अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
1: क्या, बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
2: और वो भी भाग गई।
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और

0: तो आरती, स्वागत है फिर से सखी सहेली में। और
1: हाँ
0: पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया,
1: अब
0: देखो
1: तो मान
0: रूठा
1: ही
0: ना
1: गए
0: करो, अब तक
1: होंगे
0: मान गए होंगे।
1: जी हाँ।
0: अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर
1: क्या
0: सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं। तो
0: जी
1: इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो
1: जी
0: मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया,
0: और
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा।
0: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता, शरीर के बाकी अंगों का प्रयोग कर
1: बिल्कुल।
0: रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल। और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
0: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती देखिए, खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है, वो
1: बिल्कुल
0: पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी
1: बढ़ती
0: हाइट
1: है।
0: भी इससे बढ़ती है।
1: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है, क्योंकि वो, और दिमाग भी उसे सक्रिय होता है, क्योंकि पूरा
0: बिल्कुल
1: उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मजेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे।
0: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं। और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे
1: अच्छा।
0: तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले जाते थे
1: इस
0: अपने
1: खेल
0: घर में।
1: की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ।
1: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको जो सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने
0: इतनी
1: में स्ट्रेंथ।
0: कैलोरीज यहाँ पे
1: बिल्कुल
0: खत्म कर दी जाएंगी। जी
1: जी
0: बिल्कुल, तो आरती ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
1: वाह, बहुत बढ़िया बात है।
0: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर
1: बिल्कुल,
0: झुकाकर जीत स्वीकार
1: कहते हैं
0: करो
1: ना,
0: और
1: जिस
0: हार
1: पे
0: जाओ।
1: पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता
0: हाँ
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: जिस
0: सही
1: पे
0: बात
1: कुछ
0: है
1: नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है।
0: जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है ये।
0: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती
1: बिल्कुल
0: को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार इस खेल में उनको डाल दिया तो।
0: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी,
1: बढ़ेगी,
0: और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहाँ से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है।
1: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं, एक जब हम बॉल को पास करते हैं दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस पर विश्वास रखें कि वो गोल कर देगा,
0: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे
1: जी।

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता हैं वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती हैं। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर
1: बिल्कुल
0: रहे
1: सही
0: होते हैं।
1: बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये
0: जी
1: खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत बहुत
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, यानी कहीं
1: घूमने
0: घूमने
1: जाना
0: जाना है।
1: ठीक है। तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है। और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल। और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला
1: बिल्कुल।
0: जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों
1: बिल्कुल।
0: के साथ अपना समय जी रहे हैं। और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती,
1: बिल्कुल,
0: बड़ा अच्छा
1: लगता है कि
0: लगता
1: ये
0: है।
1: भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब हम साथ में खा रहे होते हैं ना, तो वो जो स्वाद है ना, वो एक अलग होता है जब हम साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं। जबकि जब हम घर में वो चीज, वही चीज खा रहे होते हैं, तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी
1: हाँ
0: खुशबू
1: बिल्कुल
0: हमारे तक आ जाती
1: जी
0: है।
1: हाँ। और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल। और उस सब के साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता
1: बहुत
0: है। और
1: अच्छा।
0: इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे
1: जी
0: होते हैं
1: हाँ।
0: तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है, तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयाँ सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: जो भी जा रहा है, हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयाँ ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनके लिए जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें, बहुत
0: लेके
1: जरूरी है।
0: चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है,
1: क्या?
0: वो होता है टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग,
1: सबसे पहला काम।
0: सबसे पहला काम। अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप
1: सच
0: जहां
1: में।
0: जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और सामान्य दिया, जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है। और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं, और
1: हाँ
0: सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है,
1: अच्छा।
0: ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाएं। तो
1: बिल्कुल।
0: पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं कि यार कौन क्या छोड़ के आया है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए।
0: जी
1: और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो
0: जी
1: कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े
0: बिल्कुल
1: होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए, ये तो
0: हाँ। और
1: थोड़ा सा
0: अगर
1: ध्यान रखना
0: पहन भी
1: चाहिए।
0: रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए,
1: जी
0: यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं, तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार
1: हाँ
0: के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे
1: हाँ
0: हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करके चलिए,
1: बिल्कुल, ये सही कहा।
0: जाने कब कहाँ कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें
1: जरूर।
0: होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है, पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए।
0: बिल्कुल जी
1: सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखिए, उन्हें चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
0: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कंफर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ओआरएस की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतया गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
1: बिल्कुल।
0: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हो तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, डकौर, मतलब जिन्होंने जहां जहां लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार। जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियतें रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके, अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर, बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर के तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे, वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है, जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था, और अच्छा। जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे, और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, ये सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना।

0: भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना, और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है, तो विशेष ख्याल रखें। और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। रात्रि में यात्रा करने से बचें, और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए, और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है, और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
1: सच में अच्छा लगता है क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वही मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो घी, अच्छा। जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं, और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। अच्छा। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है, और इसके बाद विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है। और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोए तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बताते हैं, एक हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें, इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आंच पर पकाइए, तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं, स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
0: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा,
1: बहुत अच्छा लगेगा,
0: इतना आइसक्रीम जैसा गले में सूदिंग सूदिंग।
1: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है, ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं राजस्थान के हिसाब से। तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है, और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं गीत
0: जी।

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी
2: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 4 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम युववाणी में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और आज के इस कार्यक्रम का होस्ट सोम कविया, लेकर हाजिर आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गंगा दशहरा पर। सबसे पहले हम बात करेंगे, माँ गंगा को नमन करते हैं क्योंकि आज है गंगा दशहरा। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुर असुर वंदित दिव्य रूपम। गंगा दशहरा सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र और पावन पर्व है। यह दिन उस ऐतिहासिक और दिव्य घटना का प्रतीक है जब देव नदी गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा का पृथ्वी पर आना केवल एक नदी का बहना नहीं है, बल्कि इस धरा पर ज्ञान, पवित्रता और मुक्ति की साक्षात धारा का प्रवाहित होना है। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में माँ गंगा का शीतल जल पृथ्वी को तृप्त करने आया था और आज 25 मई 2026 को ये पावन पर्व है। इस दिन हस्त नक्षत्र और व्यतिपात योग का विशेष संयोग बनता है जो इसके आध्यात्मिक प्रभाव को 100 गुना बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं इसके आध्यात्मिक महत्व की, धार्मिक महत्व की। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाने या उनका स्मरण करने से मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन होता है। दशहरा शब्द का अर्थ ही है 10 पापों को हरने वाला। इस दिन माँ गंगा की शरण में जाने से मनुष्य के 10 तरह के कष्ट और पाप दूर होते हैं। इस दिन जल, अन्न, फल, वस्त्र और छतरी यानी छाता का दान करना अक्षय पुण्य प्रदान करता है। तो ये तो बातें हुई माँ गंगा से जुड़ी हुई। अब इसकी जो पौराणिक कथा है ये हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ये गीत।

गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। अब हम बात करेंगे गंगा की पौराणिक कथा के बारे में। गंगा अवतरण की कथा मानवीय संकल्प, अटूट श्रद्धा और पितृ भक्ति की बेजोड़ मिसाल है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में सूर्य वंश के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने मुनि को चोर समझकर उनका अपमान किया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले और राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। सगर के पुत्रों की मुक्ति मोक्ष केवल स्वर्ग से गंगा के पृथ्वी पर आने से ही संभव थी। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। भगीरथ ने वर्षों तक बिना अन्न जल के तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दे दी, परंतु गंगा का वेग इतना तीव्र था कि वे यदि सीधे पृथ्वी पर गिरती तो पूरी पृथ्वी पाताल में धंस जाती। इस संकट के समाधान के लिए भगीरथ ने देवाधिदेव महादेव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के अहंकार तथा वेग को शांत करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। कई वर्षों तक गंगा शिव की जटाओं में भटकती रही। बाद में भगीरथ की प्रार्थना पर शिव जी ने अपनी एक जटा खोली, जिससे गंगा की शांत धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। भगीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इसीलिए गंगा का एक नाम भगीरथी भी है। इस दिन जब गंगा का अवतरण हुआ तो ये बात हमने आपसे साझा की। इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए? इस दिन श्रद्धालु अल सुबह उठकर पवित्र नदियों में स्नान करें और यदि गंगा जी जाना संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, युवाणी में बात करेंगे हम अपना बिजनेस शुरू करने की क्या चुनौतियां हैं। एक नए व्यवसाय की शुरुआत केवल एक विचार से नहीं बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प से होती है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में स्टार्टअप शुरू करना जितना आकर्षक दिखता है, जमीन पर इसकी चुनौतियां उतनी ही कठिन होती हैं। सबसे पहले जो चुनौती हमारे सामने आती है, एक बिजनेस आइडिया खोजने की होती है जो न सिर्फ नया हो बल्कि बाजार की किसी वास्तविक समस्या का हल भी करता हो। एक सुरक्षित नौकरी या कंफर्ट जोन को छोड़कर अनिश्चितता के रास्ते पर चलना मानसिक रूप से बहुत तनावपूर्ण होता है। अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, यह डर अधिकांश लोगों को शुरू करने से पहले ही रोक देता है। अब इसमें प्रारंभिक समस्याएं जो आती है, जिसमें सबसे पहली है सीड फंडिंग। बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआती पैसे कहां से आएंगे? बैंक आसानी से नए आइडिया पर लोन नहीं देते और व्यक्तिगत बचत अक्सर कम पड़ जाती है। दूसरी इसमें जो आती है वो है वर्किंग कैपिटल का प्रबंधन। दैनिक खर्चों जैसे किराया, बिजली और कर्मचारियों के वेतन के लिए लगातार कैश फ्लो बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। और उसके बाद समस्या आती है कानूनी और सरकारी नियमों की। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, अपने बिजनेस को सही कानूनी रूप देना, लाइसेंस और टैक्स, भारत जैसे देश में विभिन्न विभागों से NOC लेना, GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस और लेबर लॉ के नियमों का पालन करना नए उद्यमियों के लिए काफी उलझन भरा होता है। सही जगह का चुनाव, यदि बिजनेस फिजिकल है तो सही लोकेशन चुनना सफलता की कुंजी है। महंगी जमीन या दुकान का किराया शुरुआती बजट को बिगाड़ सकता है। तकनीकी ढांचा, आज के दौर में बिना तकनीक, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, डिजिटल पेमेंट के बिजनेस चलाना बिल्कुल असंभव है, जिसे सेटअप करने में तकनीकी समझ और खर्च दोनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद कुशल कर्मचारियों की कमी का भी सामना करना पड़ता है। शुरुआती दिनों में जब ब्रांड बड़ा नहीं होता तब अच्छे और प्रतिभाशाली लोगों को अपने साथ जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। सामंजस्य और संस्कृति को भी बिठाना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो एक जैसी टीम बनाना जो आपके विजन को समझे और कम संसाधनों में भी पूरी निष्ठा से काम करे, एक बड़ी संगठनात्मक चुनौती है। इसके साथ बाजार की अधूरी समझ, स्थापित ब्रांड्स का मुकाबला करना, मार्केटिंग और ब्रांडिंग, इसके साथ साथ दैनिक संचालन और टाइम मैनेजमेंट का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। बिजनेस को बड़ा करना है तो थोड़ा बढ़ने लगता है जब हमारा बिजनेस, तो उसे बिना मालिक की मौजूदगी के ऑटो पायलट मोड पर कैसे चलाया जाए, यह भी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है। यद्यपि अपना बिजनेस शुरू करने में चुनौतियां अनंत हैं मित्रों, लेकिन सही प्लानिंग, धैर्य, मार्केट रिसर्च और मेंटरशिप के जरिए इन पर काबू पाया जा सकता है। चुनौतियां इस बात का प्रमाण हैं कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। विफलता से डरने के बजाय जोखिमों का पहले से आकलन करके कदम बढ़ाना ही एक सफल

उद्यमी की असली पहचान है। तो इस प्रकार से आप अपना बिजनेस शुरू करें, उन इन चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा ही, तो पहले से तैयार रहें। और अब सुने ये गीत।

एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे खेल जगत की, और आज मैं आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, ओलंपिक का सबसे लंबा मैराथन रिकॉर्ड, जिसके बारे में बात करेंगे। जापान के धावक शिशो कनाकुरी के नाम ओलंपिक इतिहास का सबसे लंबा मैराथन पूरा करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक में दौड़ना शुरू किया था, लेकिन बीच में गर्मी और थकान के कारण वे बेहोश हो गए और एक स्थानीय परिवार ने उनकी मदद की। वे बिना अधिकारियों को बताए जापान लौट गए। 1967 में उन्हें वापस बुलाया गया और उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की। उनका आधिकारिक समय 54 साल 8 महीने 6 दिन 5 घंटे और 32 सेकंड का रहा। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों? तो चलिए एक बार फिर से आपको सुना देते हैं ये प्यारा सा नगमा।

साथियों के साथ विदा लेते हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम्हारे अपने ही दम पर संभल सको तो चलो। तो दोस्तों, इजाज़त दें, गुड इवनिंग, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। शाम के 4:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसे ही सखियों ने याद किया तो आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी राजेश्वरी। सभी श्रोताओं का और मेरी प्यारी सखियों का महिला जगत प्रोग्राम में स्वागत है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की बात के साथ, और आज की बात में हम शामिल कर रहे हैं विश्व थायराइड दिवस। सखियों, विश्व थायराइड दिवस हर साल आज ही के दिन यानी 25 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को थायराइड ग्रंथि के महत्व, इससे जुड़ी बीमारियों के लक्षणों और समय पर जांच के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। भारत में लगभग 4.2 करोड़ लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। थायराइड हमारी गर्दन में स्थित तितली के आकार की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों जैसे मेटाबोलिज्म, ऊर्जा स्तर और दिल की धड़कन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन बनाती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन के निचले हिस्से में स्थित होती है। ये दो आवश्यक हार्मोन T3 और T4, T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन होता है और T4 थायरोक्सिन होता है, इनका प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है, जो आपके उपापचय और ऊर्जा स्तर, हृदय गति और यहाँ तक कि शरीर के तापमान को भी कंट्रोल करती है। इसे अपने शरीर का ऊर्जा नियंत्रण केंद्र समझे। ये सुचारू रूप से काम करता है तो आप संतुलित महसूस करते हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस महसूस करते हैं, लेकिन जब ये बहुत अधिक या फिर बहुत कम हार्मोन का प्रोडक्शन करता है तो आपका पूरा तंत्र, आपका पूरा शरीर जो है अनबैलेंस्ड हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। थायराइड सखियों दो प्रकार के होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें हार्मोन कम बनता है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें लक्षण है अचानक वजन बढ़ना, अत्यधिक थकान होना, बालों का झड़ना, कब्ज रहना और ठंड सहन नहीं होना, ये इसके लक्षण हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो इसमें हार्मोन अधिक बनता है, मतलब जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना अधिक बनता है, तो इसके लक्षण होता है वजन कम होना, घबराहट या फिर एंग्जाइटी होना, दिल की धड़कन का तेज होना और गर्मी का सहन न होना, ये इसके लक्षणों में आते हैं। साथ ही इसके आप जांच भी करवा सकते हैं जिसमें थायराइड के स्तर का पता चल जाता है कि कौन से स्तर तक है, इलाज हो सकता है, इसलिए आप जो है डॉक्टर की सलाह से इसका इलाज भी कर सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसमें देखो लगातार मरीज को थकान होती है, जीवन शैली में बदलाव किए बिना ही उसका वजन बढ़ता है, त्वचा रूखी हो जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, असामान्य रूप से ठंड

लगती है या फिर उदासी या फिर अवसाद होता है। कई मामलों में विशेषकर हाशिमाटो थायराइडिज्म जो होता है, जीवन भर उसको इलाज की आवश्यकता रहती है। तो ऐसी प्रॉब्लम आए हमें आने नहीं देनी है, क्योंकि हमें जो है ये थायराइड थोड़ा सा ही अगर आपको है तो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेकर आपका इलाज जो है शुरू करवा सकती हैं। अब गेंगा जो होता है वो इसी से होता है। गेंगा रोग का अर्थ है थायराइड ग्रंथि का बढ़ना। जो थायराइड ग्रंथि है अपने गले में जो है ग्रंथि तितली के आकार की, वो उसका आकार जो है सामान्य आकार से बढ़ जाता है, तब हमें गेंगा होता है। इसके जो है देखिए गर्दन में सूजन होती है, हमें कुछ भी खाने से या निगलने में कठिनाई होती है, गले में जकड़न होती है। ये आयोडीन की कमी या फिर ऑटो इम्यून जो कंडीशंस होती हैं उनके कारण होता है। तो ये जो रोग हैं थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड ही है, तो इनका इलाज आप आराम से कर सकती है। साथ ही रोज़मर्रा की देखभाल में कुछ आसान सी बातें जो आपको करनी चाहिए, तो और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं भी करनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारी जो थायराइड ग्रंथि है बिल्कुल हेल्दी रहे। देखिए अपनी दवा का नियमित रूप से अपन को लेना है, साथ ही नियमित रूप से हमें जो डॉक्टर फॉलो करने के लिए कहता है तो उसे फॉलो अप करना है। साथ ही संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना है। साथ ही आप छोटा मोटा व्यायाम कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है, उससे भी ठीक हो जाता है। योग या फिर ध्यान के माध्यम से भी आप जो है जो डिप्रेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही हमें नहीं का नहीं करना चाहिए। देखिए दवा की खुराक छोड़ें या फिर बदलें ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर हमें दवा देते हैं वही सही होती है इसके लिए। तो आप अपने मन से जो है उस दवा को ना तो छोड़ सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे तो उनको नज़रअंदाज करने चाहिए, क्योंकि इसके लक्षण तो फैक्ट होते हैं, तो आप उनको नज़रअंदाज करें। सप्लीमेंट्स से खुद ही दवा लेना। अब ऐसे होता है कि हम फ़ोन में से देख के दवा ले लेते हैं कि इसकी ये है इसकी वो है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो है हमें खुद ही डॉक्टर नहीं बनना है, बल्कि डॉक्टर के संपर्क से ही जो भी दवाई या मेडिसिन है वो लेनी चाहिए। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुना देते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों गाने के बाद आपका सभी का महिला जगत प्रोग्राम में स्वागत है फिर से। अब हम बात कर रहे हैं विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में। सखियों, आज ही के दिन जो है फुटबॉल दिवस के रूप में विश्व भर में जो है वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फुटबॉल की वैश्विक लोकप्रियता, शांति और कूटनीति में योगदान को मान्यता देने के लिए इस दिन को विशेष घोषणा की थी। इसके इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हुए ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में इस तारीख को यानी 25 मई को चुना था। ये पहला अवसर था जब फीफा ने एक वैश्विक आयोजन किया था। फुटबॉल के नियमों की बात करें तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 11 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, और इस खेल को दो टीमों के बीच खेला जाता है और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। उद्देश्य की बात करें तो मुख्य लक्ष्य गेंदों को पैरों, सिर या शरीर के किसी अन्य हिस्से, हाथ को छोड़कर आप विरोधी टीम के गोल पोस्ट में डालकर गोल कर सकते हैं, मतलब बॉल को आप हाथ नहीं लगा सकते। इसकी अवधि जो है वो 90 मिनट का होता है, जिसे 45-45 मिनट के दो हिस्सों में हाफ में बांटा जाता है। तो ये तो थी फुटबॉल की बात, और आज हम चर्चा में शामिल करेंगे जो है वो है बच्चों में ज़रूरी है टीकाकरण। सखियों, हमारे जो बच्चे होते हैं, जो नौनिहाल बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वो जन्म से लेकर जो है हम उनको टीका लगाना शुरू करते हैं। बच्चों का टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं और उन्हें पोलियो, खसरा, टिटनस और हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाता है। समय पर टीके लगवाने से बच्चों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होता है। टीकाकरण बच्चों के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा जो है सुरक्षा की पहली सीढ़ी होती है। गंभीर बीमारियों से बचाव टीके बच्चों को खसरा, पोलियो, खांसी, जो काली खांसी है वो, और डिप्थीरिया जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी करते हैं। ये बच्चों की प्राकृतिक और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं ताकि उनका शरीर भविष्य में बीमारियों से सुरक्षित रह सके और लड़ सके। सुरक्षित व प्रभावी भी है। बच्चों के लिए टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टर इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही इन्हें लगाने की सलाह देते हैं। सखियों, टीकाकरण का जो सही समय है और जो शेड्यूल होता है वो जन्म के समय तो जो है वो BCG का, OPV का और हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। साथ ही और बाद में जो है पेंटावेलेंट, रोटा वायरस और PCV के टीके, खसरा, विटामिन ए और अन्य जो जरूरी बूस्टर डोज होते हैं उनके टीके भी लगाए जाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे जो हैं बिल्कुल सुरक्षित रहें। टीकाकरण की डोज अब सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करती है। पहले जो बीमारियां गंभीर होती थी अब वह पूरी तरह से समाप्त हो

चुकी है या फिर उन्हें टीकाकरण से कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि फिर भी कई नई बीमारियां जो है उभर कर सामने आ रही हैं, ऐसे में बच्चों का टीकाकरण और भी ज़रूरी हो गया है। टीकाकरण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। टीकाकरण ने इतिहास में भी लाखों बच्चों को संक्रामक जो इन्फेक्शंस जानलेवा जो बीमारियां होती है उन्हें उनसे बचाने में मदद की है। टीके की डोज सबसे ज़्यादा प्रभावी तब होती है जब उसे सही उम्र में और उचित खुराक के साथ बच्चों को दिया जाए, क्योंकि उम्र निकलने के बाद या जो है टीका लिया जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे कुछ खास उम्र में कुछ बीमारियों के प्रति जो है संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि पोलियो सबसे ज़्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। इस वजह से पोलियो के टीके उसी उम्र के बच्चों को दिए जाते हैं ताकि उनमें जो है ये पोलियो की बीमारी ना पकड़ सके, ताकि बच्चे जो बीमारी फैलने वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोका जा सके। जिस बच्चे को टीका नहीं लगाया जाता है या समय पर टीका नहीं लगाया जाता है वो असुरक्षित होता है और उसे गंभीर रूप से बीमार होने की संभावना रहती है। उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उस रोग के प्रति लड़ने की, वो उस बच्चे की जो है समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह से हमें जो है बिल्कुल ही अपने बच्चों को जो है जो टीका है वो बिल्कुल सही समय पर अगर हम हमारे बच्चों को दें तो बिल्कुल ही जो रोग होने की या फिर फैलने की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल कम हो जाती है। 6 सप्ताह में जो है ओरल पोलियो वैक्सीन, पेंटावेलेंट, रोटावायरस, न्यूमोकोकल, ये सारे टीके होते हैं कई तरह के, वो आप लगवा सकते हो। अलग अलग सप्ताह में अलग अलग टीके लगते हैं, फिर अलग अलग साल के अकॉर्डिंग, जैसे 5 से 6 साल के बच्चे को डिफ्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस का बूस्टर 2 डोज लगता है, वैसे ही आप अपने बच्चे को लगवा सकते हैं। साथ ही 10 साल का बच्चा जब होता है उसे टिटनस प्लस डिफ्थीरिया TD का टीका लगता है। 16 साल के बच्चे को भी जो है टिटनस और डिफ्थीरिया का टीका लगता है। वैसे आजकल तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, जब से बच्चा जो है पेट में होता है तब से ही टीके लगने शुरू हो जाते हैं, तो बीमारियों की जो गुंजाइश है बिल्कुल नगण्य सी हो गई है। तो आजकल जनता जागरूक भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है देश का भविष्य है, इसलिए बच्चों को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म सफर की ओर, सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, हमने अभी प्यारा सा गीत सुना था। अब हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं आज का किचन टिप्स। किचन टिप्स में हम आज बात करेंगे अचार की। सखियों, साल भर अचार जो है स्वाद बढ़ाएगा, कैसी? देखिए, अचार एक ऐसी चीज़ है जो जैसे जैसे पुरानी होती है वैसे वैसे ही उसका स्वाद जो है और निखरता जाता है और लाजवाब होता जाता है। सालों साल अचार का स्वाद बरकरार रखने और इसे फंगस से बचाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे नमी से बचाना। अचार में पानी की एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पानी जो है अचार को ख़राब कर देता है। इसलिए पानी और जो नमी है उसी से अचार खराब होता है, तो उसे हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। साथ ही आम या फिर मिर्ची को धोने के बाद, हम जिस भी चीज़ का अचार बना रहे हैं उसको धोने के बाद सुखा लें और हमेशा

सूखे हुए सांप चम्मच का ही इसमें इस्तेमाल करें। साथ ही जो तेल होता है उसकी मात्रा की बात करें तो अचार को हमेशा तेल में डुबो कर रखना चाहिए। साथ ही साथ जार में तेल हमेशा अचार की सतह से 1 से 2 इंच ऊपर होना चाहिए ताकि आपका अचार खराब नहीं हो। साथ ही हमें जो हम जिस बर्तन या फिर जार में अचार बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। देखिए, अचार को हमेशा साफ़ सुथरा पूरी तरह से सूखे हुए कांच या फिर चीनी मिट्टी के जार में ही रखें। धातु या फिर प्लास्टिक के डिब्बे में अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। नमक और खटाई, देखिए नमक और हल्दी अचार को ख़राब होने से बचाते हैं। आमचूर, सिरका, विनेगर या फिर नींबू का रस जो है अचार का स्वाद जो है उससे चटपटा हो जाता है और उसे अच्छा रखने में भी हमारी हेल्प करते हैं। सखियों, शाम का समय सुकून और आत्मचिंतन का बेहतरीन पल होता है। ये दिन की भागदौड़ को शांत कर आराम और नई ऊर्जा के स्वागत का संदेश देता है। तो सुकून और शांति की बात करें तो शाम का ढलता सूरज ये सिखाता है कि अंत भी कभी-कभी एक नई और खूबसूरत सुबह की शुरुआत हो सकती है। साथ ही पॉजिटिविटी की जो है वो है, चाहे दिन भर की उलझनें कितनी भी रहें, शाम की एक शांत चाय और एक सकारात्मक विचार मन को फिर से तरोताजा कर देता है। तो आपको तरोताजा करने के लिए ले जाते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं ये आप लोगों की पसंद का गीत।

सखियों, घड़ी की टिक टिक यही इशारा कर रही है कि प्रोग्राम जो है अपनी समाप्ति की ओर है। सखियों, गलतियां तो इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। शुभ संध्या, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला जगत कार्यक्रम एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 5 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 वितरण समारोह का सीधा प्रसारण सुनेंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जिसे अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चलते हैं, जहाँ से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
2: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एज वी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द गणतंत्र भवन एट राष्ट्रपति भवन इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ डिग्निटरीज एंड द प्राउड रिसिपियंट्स ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
1: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 टू 2009 and he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर

0: से आपने वॉलिन की शिक्षा प्राप्त की।
1: Beyond her illustrious performing career, Dr. Ranjam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly four decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
2: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज़ की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज़्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज़्यादा पुस्तकें भी।
1: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
2: भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
1: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
2: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
1: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर फोर डेकेड्स एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ द इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
2: कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीती 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
1: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
2: रामास्वामी पल्लीस्वामी चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
1: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
2: guidelines. श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हुई।
1: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
2: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
1: श्री विश्वबंधु वॉज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस and remained so over six decades.
2: Shri Bharat Singh Bharati, Kala Lok Gayan.
0: Bharat Singh Bharati, 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
1: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरब्यातान वाज रिलीज्ड। ही हैज आल्सो गाइडेड अ न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट्स एज अ जज एंड मेंटर।
2: श्री तगाराम भील कला अलगोजा वादन।
0: जैसलमेर के तगाराम भील अलगोजा बजाते हैं, कितना सुंदर साज जो कि शीशम और कैर की सूखी लकड़ी से बना होता है। इन्होंने जैसे

0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth.
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Nilkanth.
2: Shri Kumar Bose. कला तबला।
0: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
1: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
2: Shri Janardan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
0: Mashhoor samajik karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
1: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री तुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन्स एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
2: Swami
1: to Brahmadev
2: Samaj Seva.
0: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
1: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
0: Kesariya rang ka aapne saafa pehna hai aur kesariya hi paridhan hai. Rashtrapati ji ke samne unhe abhivadan karte hue ye sant Padma Shri se sammanit hota hua.
2: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय।
0: प्रोसेनजीत चैटर्जी, इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसर के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
1: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी।
2: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा।
0: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती हैं। 3000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं।
1: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
2: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
2: डॉक्टर
0: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में

0: in 1990. Soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Srimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Srimati Sunita Godbole.
2: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है.
1: श्री तेची गोबिंद समाज सेवा.
2: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का नमस्कार करते हुए तेची गोबिंद 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए.
0: श्री गोबिंद ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना म्यांमार एंड भूटान. He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security needs.
1: Dr. H.V. Hande, Chikitsa.
2: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है. मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं. लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है. राष्ट्रपति जी के ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए.
0: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
1: Shri
0: B.C. Roy Award.
1: Shri Ghafruddin Mewati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
2: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं. इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं.
0: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस श्री गफरुद्दीन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस. हिज वर्क हैज सपोर्टेड एकेडमिक रिसर्च इंक्लूडिंग PhD लेवल स्टडीज इन फोक.
1: हाजी कासम, कला ढोलक.
2: 75 साल के मीर हाजी कासम इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं. आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं. 75 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं.
0: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द USA, UK, साउथ अफ्रीका, कनाडा, UAE, ओमान एंड सेवरल अदर्स. He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
1: Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
2: Raghuveer Khedkar ko Maharashtra ke log achhi tarah jante hain. Aap ek mashhoor tamasha kalakar hain aur tamasha ki ek mandali bhi chalate hain. और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध है.
0: ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट श्री खेडकर स्टूड अप एज अ स्टॉन्च एडवोकेट. ही लेड अपील्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड लीवरेज्ड सॉलेस एंड सॉलिडैरिटी फॉर फोक आर्टिस्ट्स.
1: श्री आर कृष्णन किटना मरणोपरांत, कला कुरुम्बा ट्राइबल पेंटिंग, उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला कृष्णन.
2: आर कृष्ण किटना जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था. आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए. सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई.
0: Shri R. Krishnan Kitna is known for using natural pigments in his art form and his skills as a storyteller. He is also
1: Professor Dr. Lars Christian Koch, Kala Musicology.
2: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
0: Professor Koch is director of the State Ethnographic Collections in the State Art Collections, Saxonia in Dresden, Germany, since October 2025.
1: He has Professor Mamidala Jagdish Kumar, Sahitya Evam Shiksha.
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार अपने NCERT में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
0: वेल प्रोफेसर मामिडला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर NEP 2020 एंड द 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स।
1: श्री प्रवीण कुमार खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
2: और अब बारी इस 23 वर्षीय खिलाड़ी की, T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
0: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रां प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
1: श्री के विजय कुमार सिविल सेवा।
2: विजय कुमार जी CRPF के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। As additional DG law and order, he strengthened public safety
1: strategies. Devba Lad, Dada Lad, Krishi.
2: Devba Lad, किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
0: Shrirang Devba Lad invented new technology in cotton cultivation, which was used by farmers in all cotton-producing states of India. He had done research work in Jawar and Tur as well.
1: Shri Anke Gowda M, Samaj Seva.
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 years यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पस एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa, Cardiology.
2: 69 वर्षीय Dr. Mandal, Interventional Cardiologist हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Buddh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
0: While working in the archaeological survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
1: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
2: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
0: श्री मांडलेवाला He has a long-term vision that by 2047, no citizen should lose life because of the non-availability of organs. For that, he has traveled extensively across India.
1: Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sahitya Evam Shiksha.
2: लुप्त प्राय जनजाति आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में चार दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने
0: इंटरनेशनली डॉक्टर मिश्र हैज एडवाइज्ड नेपाल्स एमएलए पॉलिसी लेक्चर्ड एट चाइनाज कैस हानयांग यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया थाईलैंड्स महिदॉल यूनिवर्सिटी एंड रशियाज अकेडमी ऑफ साइंसेज
1: श्रीमती तृप्ति मुखर्जी कला कंथा एम्ब्रॉयडरी
2: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है
0: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल By conferring on her the Bangashri Award.
1: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक नाटककार और अभिनेता थे 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय
0: Well, Shri Mukhopadhyay's writings on
1: Satya Narayan Nandlal Nuwal, Vyapar Evam Udyog.
2: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से
0: Under Shri Nuwal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
1: Shri
0: been supplied to the
1: Pajanivel Khel Silambam.
2: Silambam, 5,000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल
0: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
1: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
2: 94 वर्ष के हैं आप. धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसन पर आकर श्री पंड्या का सम्मान
0: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
2: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया
0: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtriya Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine, Akshar.
2: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek कि राष्ट्र ऐसे सेवकों का ऋणी है
0: His work earned him the Vishwa Hindi Samman.
1: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार
2: उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप
0: ओवर अ करियर स्पैनिंग सिक्स डेकेड्स श्री प्रसाद प्रेजेंटेड मोर देन 6000 कॉन्सर्ट्स अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनली
1: प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा ट्यूबरकुलोसिस
2: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है.
0: Professor Dr. Prasad was the first in India to establish the association of BD smoking and the use of biomass fuel smoke with chronic obstructive pulmonary disease, tuberculosis and lung cancer. He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
1: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
2: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरीय गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है.
0: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important
1: दीपिका रेड्डी कला नृत्य.
2: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है. शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं.
0: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर.
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी चिकित्सा ऑन्कोलॉजी.
2: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी. 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है.
0: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications, and organized numerous international conferences to bring cutting-edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
1: Shri
0: have borne fruit.
1: Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
2: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala, aur हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रीय कला का प्रशिक्षण भी दिया है. माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई.
0: श्री हरिचरण शैकिया परफॉर्म्ड सत्रीय डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर and second president Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Also he performed the Bhargeet with Maniram Gayan Mokhtar at All India Radio in 1948.
1: Professor Vempati Kutumb Shastri
2: 86 saal ke Shastri ji
1: sahitya evam shiksha
2: vidwanon mein se hain. Aapne Advait Vedant Darshan aur Sanskrit Kavya Shastra mein bahut sare karya kiye hain. Namaskar karte hue, abhivadan karte hue अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हैं.
0: प्रोफेसर वेंपति कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स. ही हैज आल्सो गाइडेड न्यूमरस डॉक्टरल स्कॉलर्स एंड डिलीवर्ड हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स.
1: प्रोफेसर शफी शौक साहित्य एवं शिक्षा.
2: 100 से ज़्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है. प्रोफेसर शफी शौक.
0: हिज ट्रांसलेशंस इंक्लूड हिज सीरीज ऑफ बुक्स अंडर द टाइटल द बेस्ट ऑफ कश्मीरी लिटरेचर. ही हैज आल्सो रिटन स्क्रिप्ट्स फॉर न्यूमरस टीवी सीरियल्स एंड फिल्म्स.
1: श्री बलदेव सिंह खेल हॉकी कोच.
2: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं. एक अनुभवी कोच हैं और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है.
0: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाग मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी टैलेंट.
1: श्री युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन. उनके पुत्र श्री युमनाम बिशन भोर सिंह.
2: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युवनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
0: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
2: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
0: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
1: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
2: आभारी श्रीमती शिव शंकरी जी की, आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, ख़ास तौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
0: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
1: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
2: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
0: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। ही हैज आल्सो प्लेड अ सेंट्रल रोल इन लॉन्चिंग ज्ञान दर्शन ग्रुप ऑफ चैनल्स, द फर्स्ट 24-आवर एजुकेशनल टेलीविजन चैनल।
1: प्रोफेसर श्याम सुंदर, चिकित्सा कालाजार।
2: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिसिन के मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों, खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
0: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM एंड द लैंसेट।
1: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा, समाज सेवा।
2: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृहमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
0: Dr. Sushilamma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
1: श्री एन स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत।
2: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
0: He became a master of the art and served as authuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
1: Dr. Eval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
2: Dr. Thakral, Ayurveda.

0: आयुर्वेदिक पद्धति के शल्य चिकित्सक हैं और भारत में क्षार सूत्र चिकित्सा के माध्यम से कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज and his profile has been part of international conferences also.
2: Dr. Gopal G. Trivedi, Marnoprant, Vigyan Evam Engineering, unke putra Shri Raman Kumar Trivedi.
0: Zyada dhanmi hue, 12 mai ko hi aapka nidhan ho gaya tha. Dr. Gopal G. Trivedi, ek krishi vaigyanik the aur Rajendra Krishi Vishwavidyalaya ke purva kulpati reh chuke hain. Puraskar prapt karte hue unke putra Raman Kumar Trivedi.
1: Dr. Trivedi, since the last 5 years on the principle of Think Global, Act Local, initiated a program to increase the productivity of maize.
2: Shri Arvind Vaidya, Kala Theatre.
0: Varishth kalakar hain aur 6 dashakon se zyada samay se aapne Gujarati rangmanch, Hindi television aur filmon ke kshetra mein kaam kiya hai. Kale rang ka Jodhpuri suit pehna hua hai.
1: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Professor Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Juzar Vasi, IIT बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक से क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। He has published about 200 papers in leading journals and conferences.
2: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee. Domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the Government of Madhya Pradesh in
2: Professor 2019. Gambir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: Gambir Singh Ji, Darjeeling Pahadiyon ke ek pratishthit Vanaspati Shastri Shikshavid Paryavaranvid और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ साइंटिफिक टेंपर एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस ही लेड अ 6-year कंजर्वेशन मूवमेंट दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस।
2: श्री हैली वार, समाज सेवा।
0: अब बारी हेली वॉर जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है।
1: श्री वॉर हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स। सिंस द एज ऑफ 10 ही हैज मेटिकुलसली गाइडेड द एरियल रूट्स ऑफ द फिकस इलास्टिका ट्री टू क्रिएट ड्यूरेबल लिविंग स्ट्रक्चर्स। His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। धन्यवाद।

0: see if everybody is standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Award.

0: It is indeed a moment of pride.
1: Please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of the
2: ceremony. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह और हेमराज मीणा। ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार। मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस। नमस्कार।
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय
4: नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 वितरण समारोह का सीधा प्रसारण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आइए सुनते हैं देशगान।

FM-बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह के अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं।

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोंसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम लूटमार। शब्द रचना अमित खन्ना की है और संगीत से इस गीत को सजाया है राजेश रोशन ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपके लिए लाट साहेब फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का।

इस गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बनारसी लाल जौहरी की आवाज़ में ये लोकगीत।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर कार्यक्रम FM बैंड 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। शाम के 6:30 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर, कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ा।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इस साल के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया। मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायलिन वादन के दिग्गज उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जिन जानी मानी हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें प्रदेश के भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज और अलगोजा वादक तगाराम भील भी शामिल हैं। श्री भील को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सत्रह अप्रैल 1960 को जैसलमेर जिले के मूल सागर गांव में जन्मे तगाराम भील ने 7 वर्ष की आयु में अपने पिता से अलगोजा वादन सीखना शुरू किया। तगाराम ने उस्ताद अकबर खान के सानिध्य में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने डेजर्ट फेस्टिवल और जैसलमेर कैमल फेस्टिवल सहित विभिन्न अवसरों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। तगाराम ने पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न देशों में आयोजित कार्यक्रमों में कला के रंग बिखेरे। उन्हें राजस्थान पर्यटन विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा नवाजा जा चुका है। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गंगा दशमी के अवसर पर टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बीसलपुर बांध पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत जल पूजन किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से सक्रिय भूमिका निभाकर जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने की अपील की।
2: जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षित करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी साफ सफाई, उसमें काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज गंगा दशहरे के दिन ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है, आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि जल ही जीवन है।
0: मुख्यमंत्री ने ईसरदा बांध का भी हवाई सर्वेक्षण कर जल संरक्षण, जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। गौरतलब है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल 3 प्रमुख बांधों ईसरदा, गलवा और बंद बारेठा से गुजरता है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने भरतपुर के बंद बारेठा बांध पर भी जल पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में जल संरक्षण, जल संवर्धन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश के अन्य जिलों में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले के सांगोद में, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत नेपाल

0: ली में, विधायक राजेंद्र भांबू ने झुंझुनू में और विधायक शैलेश सिंह ने डीग में इस अभियान की शुरुआत की। हनुमानगढ़ के लखुवाली हेड पर, बारा के मनिहारा तालाब पर, डूंगरपुर में गैप सागर पर, बांसवाड़ा के माही माता मंदिर पर, सिरोही और बालोतरा सहित विभिन्न स्थानों पर भी जल संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जन प्रतिनिधियों ने उपस्थित लोगों को पानी बचाने की शपथ भी दिलाई। गौरतलब है कि अभियान के तहत 5 जून तक प्रदेश भर में जल संरक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांवों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई, श्रमदान, जल चौपाल, प्रभात फेरी और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पत्नी जेनेट डी रूबियो के साथ आज जयपुर पहुंचे। वे सांगानेर एयरपोर्ट से सीधे आमेर महल घूमने गए। महल के जलेब चौक में उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। उनके स्वागत में लोक कलाकारों ने घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी नृत्य पेश किया। इस दौरान उन्हें आमेर के शीश महल, गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, सुख निवास और मावठा झील के बारे में बताया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री करीब आधा घंटे तक आमेर महल में रुके। उनका आज रात जयपुर में रुकने और कल सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान में 10,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने टिकाऊ और कुशल राजमार्गों के निर्माण के लिए समय पर परियोजना वितरण, कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के महत्व पर बल दिया। श्री गडकरी ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर रहेंगे। उनका आज रात बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। श्री शाह कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे महिला बैरकों का ई उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। उनका बीएसएफ जवानों से संवाद करने का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अब से कुछ देर बाद बीकानेर पहुंचेंगे। इससे पहले मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बीकानेर पहुंचकर गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली के तहत राज्य में परीक्षा केंद्रों का विस्तार किया गया है। संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अनुसार छात्रों की बढ़ती मांग को देखते हुए बूंदी और सीकर में 2 नए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सेंटर शुरू किए गए हैं। संस्थान की ओर से बताया गया है कि इस परीक्षा प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी सुविधा के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे सकते हैं। नौतपा शुरू होने के साथ ही आज से प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ गया है। राज्य के अधिकांश हिस्से आज लू और गर्म हवाओं की चपेट में रहे। कुछ जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं रातें भी काफी गर्म बनी हुई हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा सहित सरहदी जिलों और पूर्वी जिलों में लू का प्रकोप रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर आवाजाही कम रही। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी के कारण आम लोगों के साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं।
1: जिले में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। चिलचिलाती धूप के चलते लोग बेहाल हैं। तन झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण सड़कें और बाजार सुनसान हैं। धूप में काम करने वाले लोगों और अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को भीषण गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। इस बीच लू और तापघात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम केंद्र जयपुर की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में अगले 4-5 दिन लू और गर्मी के ऐसे ही हालात बने रहेंगे। केंद्र ने कल जैसलमेर और बालोतरा में लू का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 18 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि इस

0: महीने के आखिर में कुछ इलाकों में आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को तेज धूप में नहीं निकलने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के डॉक्टर राकेश नागर ने आकाशवाणी को बताया कि प्रचंड गर्मी के दौरान शरीर में पानी की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए।
1: गर्मी में धूप में कम से कम निकला जाए, जो भी जरूरी काम है सुबह के समय और शाम के समय संपन्न किए जाएं। इस तरह के मौसम में देखेंगे कि आम का पना, कैरी का पना ORS की तरह से डिहाइड्रेशन का काम करता है। इसके अलावा पुदीने का शरबत, धनिया की चटनी जो काम में लिया जाता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस करता है। तो जैसे गुलाब का शरबत है और खस का शरबत है, इसका नियमित रूप से सेवन हम लोग कर सकते हैं जिससे कि डिहाइड्रेशन नहीं हो।
0: रेलवे ने ग्रीष्मावकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भावनगर टर्मिनस और शकूर बस्ती के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये गाड़ी 29 मई से 27 जून तक साप्ताहिक रूप से चलाई जाएगी। ये रेलगाड़ी आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रींगस, नीमका थाना, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट सहित विभिन्न स्टेशनों पर करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख प्रतापा राम ने तैयार किया है। फलौदी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात फिटनेस की। फलौदी जिला पुलिस ने कल संडे ऑन साइकिल अभियान आयोजित किया। इसके तहत पुलिसकर्मी थानों से साइकिलों पर रवाना हुए। उनका काफिला मेजर शैतान सिंह स्टेडियम पर पहुंचा। एएसपी ब्रजराज सिंह चारण ने बताया कि स्टेडियम में योग सत्र रखा गया। पुलिस अधिकारियों और जवानों को विभिन्न तरह के योगासनों का अभ्यास करवाया गया। इस मौके पर सभी से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की गई। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत पानी बचाने के कामों को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने अभियान से पहले तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़े कामों को नियमित रूप से प्रगति पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। एसपी सतनाम सिंह ने बताया कि इसके तहत प्रभावी कार्रवाई की गई। 29 वाहनों पर काली फिल्म लगी होने पर चालान किया गया। वहीं वाहन चालकों से हमेशा यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने और जरूरी कॉल होने पर सुरक्षित जगह रुक कर बात करने की सलाह दी गई। जिले में गैर संचारी रोगों एनसीडी की समय पर पहचान और बेहतर इलाज के लिए नई परियोजना शुरू की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की ओर से ये परियोजना शुरू हुई है। CMHO डॉ. प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट नाम की इस परियोजना में 30 साल से अधिक की आयु के लोगों की 10 तरह की जांचें निशुल्क की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आधुनिक पोर्टेबल उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इस पहल से गैर संचारी रोगों की जल्द पहचान और उपचार में सहायता मिलेगी। जिले में प्री डीएलएड परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिला समन्वयक शशांक दवे ने बताया कि इस परीक्षा के लिए जिले में 16 केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 8,900 से अधिक पंजीकृत परीक्षार्थी थे। परीक्षा में 84% से अधिक उपस्थिति रही। विभिन्न फ्लाइंग दलों ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। फलौदी में पिछले दिनों पुलिस ने नशीले पदार्थ बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर एक आरोपी

0: को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 1 किलो से अधिक एमडी बरामद की गई। ये कार्रवाई बाप क्षेत्र के मोड़गिया गांव में की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से बरामद किए गए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर करीब 30 किलो से अधिक की ड्रग्स बनाई जा सकती थी। उन्होंने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी थाना अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फलौदी में रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बालोतरा और पोकरण मार्ग पर 3 नई बसों का संचालन शुरू किया है। डिपो के मुख्य प्रबंधक चंद्र प्रकाश पालीवाल ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती हुई परिवहन मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इससे आसपास के गांवों और प्रमुख शहरों के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही नई बस सेवाओं के शुरू होने से महत्वपूर्ण मार्गों पर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। फलौदी रोडवेज बस स्टैंड पर पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से आपातकालीन मॉक ड्रिल अभ्यास भी किया गया। नागरिक सुरक्षा के लिए हुई इस ड्रिल में एयर स्ट्राइक की सूचना मिलने पर राहत और बचाव कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई। साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय का आकलन किया गया। मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस दल के साथ स्काउट, फायर ब्रिगेड, पुलिस, चिकित्सा और अन्य विभागों की टीमों ने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने पिछले दिनों राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता, पोषण स्तर और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने फलौदी और बाप क्षेत्र का दौरा कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं को भी जांचा। उन्होंने खराब हैंडपंपों और पाइपलाइनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान री 3 प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवाजा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज टोंक जिलारा बीसलपुर बंधाऊ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 2 दिन रा बीकानेर दौरा सारू आज पधारण रो कार्यक्रम। काल सांचू सीमा चौकी माथे प्रहरी सम्मेलन में शामिल फैला। और नौतपा सरू भवन सागई प्रदेश में गर्मी रो जोर और बढ़ियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान री 3 प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार देर नवाजा। इस साल रा पहला नागरिक अलंकरण समारोह में 2 जना ने पद्म विभूषण, 6 ने पद्म भूषण और 58 हस्तियां ने पद्मश्री मानु नवाजी चा। देवलोक व्या फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल ने कलारा हलका में योगदान सारू पद्म विभूषण नवाजी चा। वायलिन बजावन वाला दिग्गज उस्ताद डॉक्टर एन राजम ने पद्म विभूषण सम्मानित करी चिया। पद्मश्री नवाजी जावन वाली हस्तियां माए प्रदेश रा भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज और अलगोजा बजावन वाला तगाराम भीली शामिल है। सत्रह अप्रैल 1960 ने मूल सागर गांव में जन्मिया तगाराम ढांडा चराता थका वारा पिताजी 7 साल री उम्र में अलगोजा बजावन री सीख ले उनो शुरू कीनो। तगाराम उस्ताद अकबर खान आला दर्जा री सिखावन हासिल कीनी। वह डेजर्ट फेस्टिवल और जैसलमेर कैमल फेस्टिवल समेत न्यारा न्यारा मौका माथे कलारो दर्शाव कीनो। तगाराम पर्यटन विभाग री ओर न्यारा न्यारा देशा माए राखी जिया कार्यक्रम माई कलारा रंग बिखेरिया। माने राजस्थान पर्यटन विभाग समेत न्यारी न्यारी संस्थावां कान्यो नवाजी चिया। राष्ट्रपति भवन माए राखी जिया जलसा माए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और मान्योड़ा लोग मौजूद रहा। ध्यान जोग है कि साल 2026 सरू 131 पद्म पुरस्कार दिया जावना है, जमाए 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री

0: पुरस्कार शामिल है। मान जलसारा दूजा दौर माए और हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवासी चावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज गंगा दशमी रे मौके टोंक जिला रा बीसलपुर बंधाऊ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। मुख्यमंत्री बीसलपुर बंधा माथे रीति रिवाज जल पूजन कीनो। ई मौके वे कहो कि पानी जिंदगी री बुनियाद है और इन बचावन सारू आ खास पहल है। मुख्यमंत्री जनता ई अभियान माए शामिल भेर पानी बचावन री मुहिम ने सफल बनावन री अपील कीनी।
1: जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षित करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी साफ सफाई, उसमें काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज गंगा दशहरे के दिन ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है, आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि जल ही जीवन है।
0: मुख्यमंत्री ईसरदा बंधारोई हवाई सर्वे कर पानी ने बचावन वाणा प्रबंधन और पाणी तू जुड़ी परियोजना वारा कामा रो जायजो लीनो। ध्यान जोग है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना रो फीडर चैनल तीन खास बंधा ईसरदा गलवा और बंध बरेठा निकला है। मुख्यमंत्री भरतपुर रा बंध बरेठा बंधा माथई जल पूजन कर और अभियान री शुरुआत कीनी। ई मौके वे राज्य माए पानी बचावन और पारंपरिक जल स्रोता ने और बेहतर बनावन रो राज्य सरकार रो वायदो दोहरायो। प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला में आई वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रा तहत कई कार्यक्रम राखीचिया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा जिला रा सांगोद माए, देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत पाली माए, विधायक राजेंद्र भांबू झुंझुनू माए और विधायक शैलेश सिंह डीग माए ई अभियान री शुरुआत कीनी। हनुमानगढ़ रा लखुवाली हेड, बारा रा मनिहारा तलाव, डूंगरपुर माए गेप सागर रिपाल, बांसवाड़ा रा माही माता मिंदर, सिरोही और बालोतरा समेत न्यारी न्यारी ठोणा पानी बचावन जुड़िया खास कार्यक्रम राखीचिया। ई मौके जनता ने पानी बचावन री शपथ ही दिराईची। ध्यान जोग है कई अभियान रा तहत 5 जून ताई आखा राज्य माए पानी बचावन जुड़िया खास कार्यक्रम राख्या जावेला। गांव माए कूड़ा बावड़िया तलावा और पानी रा दूजा स्रोतों री साफ सफाई, जल चौपाल, प्रभात फेरी और पौधा रोपण सरीखा कार्यक्रम राख्या जावेला। अमरीका रा विदेश मंत्री मार्को रूपियो वानी जोड़ायत सागे आज जयपुर पधारिया। आमेर महल रा जलेब चौक माए वारो राजस्थानी अंदाज माए स्वागत करीचियो। वारा स्वागत माए लोक कलाकार घूमर कालबेलिया और कच्छी घोड़ी रा नाच पेश कीना। वाने आमेर राशीश महल गणेश पोल दीवान ए आम दीवान ए खास सुख निवास और मावठा झील रबारा माए जानकारी तीरीची। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज राजस्थान माए 10,000 किलोमीटर उम्बत्ता लंबा नेशनल हाईवे रा हालात रो जायजो लीनो। वे टिकाऊ और कुशल हाईवे बनावन सारू टेमसर परियोजना बनावन, करड़ा गुणवत्ता मानका नी पालना करण और उन्नत प्रौद्योगिकी रा एकारा महत्व माथे जोर दीनो। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो बीकानेर रा 2 दिन रा दौरा सारू आज रात नाल हवाई अड्डा पूगण रो कार्यक्रम है। श्री शाह काल सांचू सीमा चौकी माथे रख्या जावन वाला प्रहरी सम्मेलन में शामिल भेला। ई दौरान वे महिला बैरकां रो ही उद्घाटन करेला। ई पाछे गृहमंत्री बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय माए अहलकारा सागे सरहदी हलकां री हिफाजत और विकास रे बारा माए मीटिंग करेला। मारो बीएसएफ रा जवाना सागे बातचीत रो कार्यक्रम है। गृहमंत्री रा प्रस्तावित दौरा न ध्यान राखता थका मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही अब थोड़ी देर पछे बीकानेर पूग रहा है। इनु पहले मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बीकानेर पूगर गृहमंत्री रा दौरा री तैयारियां रो जायजो लीनो। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान री ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली रा तहत राज्य माए परीक्षा केंद्रा री तादाद बधाईची है। संस्थान रा क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर रा मुजब बूंदी और सीकर माए 2 नुआ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सेंटर खोली चिया है। राज्य माए फिलहाल जयपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर माए ऑन डिमांड परीक्षा केंद्र है। रबे मौसम प्रदेश रा घनखर हल्का माए आज लू बाजी।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम में सुनने वाला सगला बहने बहने जगदीश भाई का राम राम। देखो बहन चौपाल माथ बैठा ना, खेत खलियान जरूरी और बदलते वक्त की पशुधन जगह अपनों पुश्तनी धंधो आगे करा और स्वास्थ्य संबंधी बातचीत क्रिया करा। यानी टाइम टाइम आते आप अलग अलग बात करा तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहे। और यानी कई भाई खेती यान की करे जबकि बारू मास ही चले, कहने का मतलब एक बार करे और पचपाची बींगे बहने थोड़ो ध्यान रखना पड़े, बाकी चालती रहे और बिना पकाया करा जो कि फलाली खेती है बागवानी खेती। और भी मैं विशेष रूप में अपने नागौर क्षेत्र में अपन देखा तो ये कर सका बेर की खेती, विशेष रूप में जगह सेब बेर आया करे एप्पल बेर बोले, पैदावार भी अच्छी देवे और हर साल फला अपन जगह टाइम तोड़ ला बींगे बाद में कंटाई छंटाई जगह है बाग करनी बहुत जरूरी है। अगर बा अपन नहीं करा तो बांगी नई शाखा बने को नहीं, नई शाखा नहीं बनी ना पौधा में जगह फला आई बांगी गुणवत्ता रह कौन। तो बेर को जो पौधा है बींगी कटिंग आप कई तरीके करा बींगो वक्त सही हुआ जगह टाइम आप फल तोड़ लेवा, विशेष रूप फरवरी मार्च को जो महीनों है बींगे बाद में पौधे की आप सही तरीके कटिंग करता। और कटिंग उतरो पौधे को जो जमीन भाग है लगभग डेढ़ लेर दो फीट ऊंचाई में आप काटता बींगे बाद में सूखी और रोगग्रस्त और कमजोर जो की टालियाँ हैं शाखा हैं बने हटाएगा। फंगीसाइड को भी इस्तेमाल करा, अपन लागे पौधे में फंगस लाग रही है फफूंद लाग रही है तो भी बचाने को तरीको भी आपने करना चाहिए। विशेष रूप कॉपर जो कि ऑक्सीक्लोराइड है या कार्बन डाइजियम है बींगो आप स्प्रे कर देवें। पौधे की अपन देखभाल करनी चाहिए, पर्याप्त खाद कटाई के बाद और जैविक खाद विशेष रूप जो कि गोबर की खाद है वह आपने डालनी चाहिए ताकि पौधों बढ़वार करे नई शाखा वहाँ आवे और अच्छी पैदावार है जगह आपने देवे। सिंचाई को भी ध्यान रखा, शुरुआती दिनांक मायने आप हमने टाइम टाइम में पानी भी देना है ताकि बिंगी जगह नई शाखा वहाँ आए वह निकल सके। मिट्टी और खरपतवार पौधे के करने जगह मिट्टी है वह थोड़ी पोली आप बिन कर देवा गुड़ाई कर देवे ताकि खरपतवार नहीं वेर, खरपतवार अगर आ जाए तो बिन्हें भी आपने हटानी है। इंगे शाग शाग कटाई के बाद जगह फायदो है बिंग आप विशेष रूप में ध्यान रखा था देखे, एक तो अधिक फल आए अच्छी कटिंग आप अगर कर हाँ तो बीती ज़्यादा बढ़िया फुटान हुई और आवनल जो कि फल है वह आपने ज़्यादा मिली। इन तरीके में आसानी जो झाड़ीदार पौधों बन रही है तो बिना आपन तुड़ाई कर देखभाल कर आसानी आप दूर कर सका। क्यों उनको मतलब है कि जो कि बागवानी खेती है बा एक बार लगानी अलग बात है लेकिन भी आप सही पैदावार क्या लेवा बिंगो भी आपने बीतो ही बराबर ध्यान रखना पड़े। और सिंचाई की जब बात करें तो बागवानी खेती में अपन ड्रिप सिस्टम अपना सका ताकि बार बार पानी देना नहीं पड़े, एक पौधों एक जगह में आप पानी छोड़ा जितना पौधा आपने लागूड़ा है बांके मायने जितनी जरूरत है जड़ा के मायने सीधो पानी जो को मिल सके। तो यह छोटी छोटी बात है आंगवा अपन रखना ध्यान और अभी काम की बात ले हैं एक ब्रेक।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो वहाँ तक बेर की जगह खेती है और बागवानी जगह खेती है बिंगी करी बातचीत और अभी जान गर्मी को चाले मौसम और मई के लास्ट में लगभग जोन जो को पहले दूसरा सप्ताह है बरखा को दौर शुरू हो जाए तो बिंगी आप तैयारी क्यान करा जबकि आप फसल बो वहाँ बिंगो बीजोपचार क्यान करा और की

0: ठीक है अपन जगी मिलवा खेती करा चावार ठावा गांव शाडोगणगा धर्माराम जी सांगवा बाऊ करी बातचीत करा आप ताई पूछती। राम राम सर।
1: राम राम सर। राम राम सर।
0: सब पहले आप बात आ करा के जैविक बीजोपचार की, जैविक बीजोपचार की आप बात करा जना। देखो लारले काफी टाइम उचाले कि जैविक खेती, जैविक खेती, और खेती के मायने जो कि आप रासायनिक दवा खाद या पेस्टिसाइड जो कि भी काम में ला बा शरीर ने भी नुकसान पहुंचावे और सागे सागे जानवर के भी बिल्कुल ही बा काम की कोनी। विशेष रूप में जान आप जैविक बीजोपचार की बात करा तो जान
1: देखो बीजो उपचार रिजल्ट ताई बात है तो भाई बाजारों जितना भी आप पेस्टिसाइड लावा तो बे तो खर्चीला भी है, महंगा भी है, खर्चो भी लागे और बारो अनु तो नुकसान हुआ है। एक तो आप बारे जमीन में जहरीलापना आवे और खर्चो भी किसाना ने ज्यादा लागे। तो जो जैविक उपचार आप घरे जो उपचार करा इन बोलिया करे जैविक जकी
0: मतलब
1: चीजा
0: आपनो जो को पुष्टनी तरीको है,
1: पुष्टनी तरीको है जकी चीजा आपने घरे ही मिल जावे और प्राकृतिक रूप आपने वे चीजा मिले। तो बीज ने उपचारित करने वास्ते बिल्कुल सादो और आमनो सरल है जो को तरीको है। वीर मैंने देखो कि बीजा अमृत बनाने वास्ते 5 किलो गाय रो गोबर चाहिए, कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 किलो गाय रो गोबर और 5 किलो गोमूत्र चाहिए। और बीर मायने 50 ग्राम आप जो और चूनो आया करे कड़ी, तो वो 50 ग्राम घरा के करिया करा, तो वो 50 ग्राम कड़ी मिला दे और 20 लीटर पानी रमायने घोल परी प्लास्टिक रे ड्रम रमायने घोल दे वहां पर, तो बिने 24 घंटा वहां 2-3 बार हिला दे वहां, तो वो आप बीजा अमृत है जो एकदम तैयार हो जाए 24 घंटा।
0: और कहण को मतलब जगह बीज जान बाजरो है
1: कोई भी बीज हो
0: बिना आप उपचारित कर ले 5-24 घंटा में और हिलानो पड़ेगा।
1: बिल्कुल 2-3 बार आप हिला दे वहां और अगर
0: घंटा मतलब
1: मतलब 2-3 बार हिला दे सुबह दोपहर शाम और मान लो 24 घंटा वहां पर काम नहीं लेना तो आप 24 घंटा और ही पड़ी रहते इनमें फायदो है नुकसान वाले कोई चीज है कौन है। तो बीज बाद रमायन आप इन छान पर और आप मात्रा है जो कि 100 किला बीज है जो कि उपचारित हो जाए।
0: मतलब क्या उनको मतलब ओ जो तो आप बतायो ओ मसालो ओ जो को बीजामृत बनायो 100 किला चाहे वो बाजरा हो, मूंग हो, मोट हो, गवार हो,
1: कोई भी बीज हो
0: उपचारित कर सका।
1: बिल्कुल।
0: ओ जे 24 घंटा ज्यादा रह जावे तो गड़बड़ हुए के
1: फायदा जीवाणु है जो कहाँ पारा ज्यादा हो नुकसान ने वे, तो 24 घंटा बाद में आप 48 घंटा में छान पर आ रहा पर जबकि टाइम बीज आपने बीज नो वे भी 8 पोर पहला बीज ने प्लास्टिक माते बिचा पर और चौखी तरह आप बीज ने जो रड़ा लेवा और हड़को शोक पाचो जो सुखा लेवा।
0: आने ओ जो को थे बतायो लगभग 100 किला बीज में ओ आप जो को उत्पाद बनायो है बीजामृत जो के आप कह ओ आप काम में ले सका। तो बाजरो जान लगभग 125 ग्राम आप बीघे में काम में लेवा बुआई में।
1: बिल्कुल।
0: अब जान कोई भाई बोरिया है 25 बीघा के मायने तो थोड़ा सो ही हुई भी बीते बीज खातर कितो काम में लेना चाहिए।
1: बीते बीज रो आप जो मान लो आप
0: मान लो आप 5 किलो बाजरो जो को बो हाँ भी ने घोड़ू आपने उपचारित करना है
1: भाई 5 किलो बाजरो आपने 2-3 लीटर पानी में चुको सही सही बीज जाए और बाकी जो
0: प्लास्टिक,
1: भी
0: प्लास्टिक विचार भी मत बाजरो
1: मैंने विचार पर और आप बाजरी मायने जी तो अनुमान हो भी रड़ा सका भी तो रड़ा लेवा और जकी चीज बाकी बचे तो खेत में छिड़काव करा तो भी वहां पर फायदो मिले।
0: क्यों को मतलब जाने 5 किलो बाजरो आपने उपचारित करना है और जीवामृत तो जो को थे बता रहा हो जगह वहां उपचारित करा तो भी मैं वो लीटर या आधो लीटर की तो डाला जितने वो भीग जाए पूरा भी तो
1: पूरा पूरा भीग जाओ जी तो डालना चाहिए। अब जो आपने 20 लीटर आप बनावा जगह मैं 100 किला बीज भी तो भी अनुपात वहां पर है जो वो डाल ले
0: काम में लेला
1: काम में लेला।
0: और इनके बाद में वो प्लास्टिक माते जान आप उपचारित कर बाजरो है चाहे मूंग है चाहे मोट है आप रखियो बिने कितने टाइम तक सुखाऊं
1: वो हड़को फर्को पड़ जाओ बस जेकर जड़ आप बीजी जाओ भी बीज आपस में बंद है नहीं
0: आल है जकी थोड़ी कम हो जाओ
1: बीज आपस में बंद है नहीं होर बीजी जाओ नहीं तो कहीं ज्यादा
0: किलो अलग अलग हो जाओ
1: दानो अलग अलग नहीं तो कहीं है कि मशीन रमाई दाटो भी आ जाओ ज्यादा किलो होना। और इन देखो एक बड़ी चीज रो फायदो है कि एक तो आपने जमीन रे मायने या बीज आप बारू लावा बीज रे हाथ जका कई बार कहीं है कि परजी भी है जगह दूसरी जगह है जगह बीमारियां है जगह बीज रे हाथ आ जाए करे तो भी हो बचाव हुई और जमीन रमाइने हर दाने रो है जो को अंकुरण होने रमाइने इस समता
0: है उनको मतलब ज्यादा तो बीज आप जी मुझे भी हिसाब बोयो है वो
1: बिल्कुल
0: उगी
1: बिल्कुल
0: और कीड़ो
1: कीड़ा नहीं लगे
0: पूरो को पूरो अंकुर तुझे बीके बाद के मायने जे आप बाद के मायने बात करा के भाई कोई और छिड़काव करनो और करनो जरूरत पड़े कहीं जान मान लो आप उपचारित कर बो दियो
1: नहीं जो देखो आप उपचारित कर बो दियो तो इन आप ने फायदो मिले अगले आने वाले टाइम में इनमें फायदो रहे जमीन रमाइने एक तो कीड़ा और कम हुए चीजों और भी बाद में जो आप कई बार देखा भाई लोग डीएपी है या यूरिया ज्यादा डालिया करे तो यूरिया की जगह आप अगर जीवामृत बना ना कहा तो भी आप ने लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा फायदो मिले
0: क्या डालना आप
1: वो देखो जीवामृत बनाना तो साधारण सरल तरीको है
0: कहीं कहीं चीज भी मैं आपा काम में लेवा जीवामृत बनाना
1: देखो जी आपा कन 200 लीटर ड्रम हुए पानी रो तो भी मैं 10 किलो देसी गाय रो गोबर मिला देवा और 5 किलो भी मैं गोमूत्र डाल देवा और 1 किलो गुड़ 1 किलो बेसन खाटो पीटो केड़ो वो चना रो वो चाहे उड़द रो वो कोई चीज रो वो मूंग रो वो मोट रो बेसन 1 किलो तो बिन एक ड्रम रमाइने छिया रमाइने 200 लीटर पानी रमाइने मिला रख देवा बीम बाद मायने कही है कि जो एक चीज और बोलिया के संजीव मिट्टी जिकी आपार तटे सब जगह हेमा मेडा माते उपलब्धि है और जो जठे ज्यादा आपार यूरिया है डीओपी ना कुड़ी या ज्यादा जहर छिड़काव करो तो बे कहीं करे नाडी रे तालार माए जो आपने खेल दिया है या पिंपल है जो भी वे
0: आपको क्या उनको मतलब
1: नीचे एक किलो
0: यहाँ की जगह मिट्टी ले जान आग के नीचे ले ली आप खेजड़ी के नीचे ले ली या सीहू के सारे ले ली
1: हाँ
0: बुआई को रासायनिक खाद आदि को बट प्रयोग है जो को
1: बिने
0: किसी मिट्टी बोला
1: बिने संजीव मिट्टी बोला करे बीर माई ने कही है की जीव चिड़िया मीट ज्यादा हुए और भी खाद खतेड़ो हर तरह हुए बी में सूक्ष्म जीवाणु है जिसका
0: ज्यादा
1: खेता में फायदा करने वाला मिट्टी
0: में
1: मिला दे
0: किलो
1: आधा किलो एक किलो ज्यादा हूँ ज्यादा 200 लीटर
0: इन
1: आप कम कम 7 दिन वो तैयार हुआ है 7 या 10 दिन लगे जो अब गर्मी मौसम में 7 दिन तैयार हो जाए और फसल बुआई हूँ आप 20-21 दिन बाद में है जो इन्हें छिड़काव में काम में ले तो देखो एक तो
0: खेत में या खड़ी फसल में की टाइम छिड़काव कर
1: कट्ठे भी यहाँ पर काम ले
0: जमीन में छिड़कदा
1: जमीन पर छिड़कदा और फसल पर भी मतलब
0: छिड़को बताओ आप जो अमृत और जमीन में छिड़क दे
1: बिल्कुल फसल बोया पहला भी आप छिड़क सको और पानी रे साथ ही जो खेता में जटे पानी री सुविधा है जगह लोग पानी देवे तो वे पानी री साथ दे देवे या जगह भी पानी देवनी सुविधा नहीं है बिरानी खेती है
0: सिस्टम काम ले तो भी में सागे डाल
1: सागे डाल दो छान पर और अच्छी तरह ताकि ड्रिप व्रिप दटे नहीं और जगह आप वीरानी खेती वाला है तो आप हमने रात दिन जूम भी छिड़काव करा तो भी हिसाब आप
0: छिड़काव कर जान आप मान लो 15-20 दिन या महीने पर की फसल हो जाए तो खड़ी फसल माते इंगो जे आप स्प्रे करा तो
1: बिल्कुल आराम कर सका खड़ी फसल पर अगर स्प्रे करा ला तो इनमें मतलब 1 लीटर में 5 लीटर पानी मिलार करना
0: पड़ेगा
1: बिल्कुल
0: यानी 1 लीटर जो को घोल है मायने 5 लीटर
1: पानी मिला छिड़काव कराला
0: 6 लीटर की और बिंगो स्प्रे करता
1: बिंगो स्प्रे करा तो आपने कई तरह का फायदा है जगह किसान भाई ने मिलेगा जहाँ एक तो फसल बडवार हुई जगह तेज हुई और जबकि आपने रोग रोधी क्षमता है जबकि ज्यादा हुई फसल में बीमारियां बहुत कम लागी और मान लो मेरी जड़ा है जबकि मजबूत हुई गहराई में जाए बिल्कुल
0: दिमक आदि लागे
1: दिमक आदि बिल्कुल कतई नहीं लागे और अपारा जगह मित्र कीट है तो बाने भी इन नुकसान बिल्कुल ही नहीं वेला
0: क्या उनको मतलब जगह आपने फायदा पुगा बे कीट भी बचुड़ा रही बे आपनी फसल ने जो फायदा पुगा इमें डालो राम जी आप बात यूं करा जान ए जगह दो चीजा थे बताई बीजोपचार की और एक जीवामृत जो है इको थे कोई थारे किसी फसल में प्रयोग करियो और कहीं फायदा हो
1: देखो सर मैं तो बाजरी में भी करियो और मूंग गवार में भी करियो देखो मोड़ तो बिल्कुल मोड़ तो कहीं कई सालों बावा कोने तो ज्यादा फसल है मूंग और बाजरी यहाँ पर गवार ही है तो इन मायने लगभग
0: लगातार कितने साल प्रयोग
1: 2020 बाद में लगातार कर रहा था
0: कहीं फायदा देखियो
1: फायदा देखो बीमारी कदी कोई लागी कोने और रासायनिक छिड़काव मान कदी करनो पड़ियो कोने और आज तक यूरिया या डीओपी आपन कदी एक दाणो बपराउनो काम पड़ियो कोने और कोई तरह की बीमारी आपन खेता में बिल्कुल नहीं लागे बडवा रेज की बहुत तेज हुए
0: ए दो आप बात करी डालो राम जी एक तो जान बीजोपचार की और एक जीवामृत जो है प्रयोग कर आप फसल माते छिड़काव भी कर सका और जमीन माते भी कर सका
1: बिल्कुल
0: फायदो हुए और पूरो जैविक तरीके जैविक जकी आप बातचीत कर
1: साधारण ऐसा बिल्कुल कम खर्च
0: और घर को घर के मायने आप बनाए लेवा एक चीज और ज्ञान है आपनों जो कोई इलाको है कदी देखा आप बाजरी में स्वाव ज्यादा हुए कदी मोट में हुए कदी मूंग में हुए कदी गुहार में हुए तो यान को भी कदी प्रयोग करियो कहीं के भाई कई बार आप देखा कि मूंग की फसल पूरी बिगड़ गई या बाजरी की बिगड़ गई या ग्वार की बिगड़ गई मोठ की बिगड़ गई।

0: मुंगार में तिल थोड़ा दोरा रहे हैं,
1: मोट में सौरभ जी
0: मोटा में हो रहा रहे है, या बाजरी में है जगह तिल हो रहा रहे, गुवार में भी वे पच कहीं देखो आमनी अठ जमीन है जो की एक तरह की कौन नहीं, कटी बाजरी ज्यादा माना तो कटी तिल ज्यादा माना,
1: एक खेत में आप 20 बीघा में देखा तो बीमे फर्क
0: बीमे कई जगह फर्क आवे, तो कटी मान लो मिश्रित खेती भेड़ो टेढ़े की खेती वजन देखो कटी तिल ज्यादा हो जाए तो कटी बाजरी ज्यादा हो जाए तो भी वहां पान है जमीन
1: मतलब
0: है जो खाली कौन रहे फायदा
1: मिल जाए, जो को दूसरी फसल है पूरो
0: पूरा तो हो जाए,
1: और जो को आपन ए निश्चितता रहे के भी आ निपजी कि नहीं निपजी वो भी फायदा हो जाए,
0: वो फायदा हो जाए मतलब खेत खाली कौन रह जाए,
1: खाली को रहे नहीं मैं बिंग मायने मान लो मूंग नहीं निपजे तो तिल निपजे, तिल नहीं निपजे तो मोट निपजे है ना, ग्वार निपजे बाजरे के साग भी उजे पूरी चीज की बन जाए।
0: और आज जीवामृत में आपने एक चीज और बताओ आज, एक तो आप पानी तरल जीवामृत हो छिड़काव रहो और दूसरा इन मायने काठो जीवामृत भी और बोलिया करे जो कहने घन जीवामृत बोलिया करे,
1: वो कई तरीके होते
0: हैं तरीको लगभग हागे अभी मैं एक पानी है जो नहीं डालिया करे, बाकी जो सागी चीजा है आलो गोबर है भाई आप 10 किलो गोबर ले लियो मात्रा रमायन है 10 किलो गोबर माते 2-3 लीटर आप गोमूत्र छिड़क दियो और भी हम बाद रमायन आप 1 किलो है जो गुड़ नाग दियो 1 किलो बेसन नाग दियो बिना दिन में डेली रो कहीं मिला होता रहे वहां तो वो 10-15 दिन है जो मिला होता रहे वहां भी रमाय जीवन हो जाए बीता और बीता बन जाए और 4-5 किलो प्रति बीघा खेत रमायन आप छिड़काव है जो आतू कर दे
1: और मतलब सुको टाइप हुए
0: सुको टाइप है भुरभुरो
1: और खेत के मायने हाथों बुरका दे
0: हाथों बुरका दे वहां पर जोड़े में जीव यूरिया फेंक जीव फेंक दे वह
1: ओ किसी टाइम फेंकना चाहिए जान आप पहली खेती करा भी हूं पहली या खेती करने
0: इन्हें किसी टाइम नाग सका आपने जना जरूरत महसूस हो देखो खेती हूं करी हूं पहला बरसात आता ही नाग दे जन भी तो और भी ज्यादा फायदा है बाद में बीरानी
1: खेती में भी डाल
0: बिल्कुल खड़ी खेती में आप बीरानी खेती में नाग सका पीवत में नाग सका पीवत में जो मतलब 4-5 किलो प्रति बीघे नागा और बीरानी खेती में 3-4 किलो ती नाग दे नुकसान कभी नहीं
1: जाने आप जमीन में बुरकाव कर दी और बीघे बाद में बरसात हुई तो बीघो जो अंश है जमीन
0: अंश जाते रहे जितना भी सूक्ष्म आपारा जीवाणु है फसल ने जका पोषण देने वाला जीवाणु है वे हमारी जड़ा ताई जाए और फसल ने जो बराबर पूरा पोषण दे सभी जकी पोषक तत्व हमारी कमी जीती भी अलग अलग आवे
1: पूर्ति
0: तो बा है जकी रमाई पूर्ति
1: हो। एक आप बात करिया करा देखो मिट्टी की जांच है पानी की जांच है मिट्टी की जांच करावा आप बीम आपन पतो लाग जे के खेत के मायने किसा पोषक तत्व कम है और किसा डालना है बी हूँ आप जांच कराने के बाद पतो लाग भी आपने खेत के मायने ए पोषक तत्व है आगे कमी है बी में ओ क्या पूर्ति करे जो थे बताए
0: बी ई रमायने पूर्ति करने वाते जो पोटास री अगर कमी है बतावे है या भी मैग्नीशियम की कमी बतावे या कई चीजा की कमी है भाई 16-17 पोषक तत्व आया करे तो लगभग लगभग तो जमीन में वही है तो कई चीजा कम हो जाए तो बीर मायने आप है जो जीवामृत घन जीवामृत बनावा ईर माई जो 10 किलो गोबर में 2 किलो राख रो उपयोग कर सका और भी आप कई चीजा ईर माई बड़ा मिलावा तो आपने जो कभी पोषक तत्व की पूर्ति हो जाए और तरल जो जीवामृत बनावा जीव आपने बीर मायने भाई तांबे की कमी है या शीशे की कमी है तो लोरी कमी है तो वह छोटा छोटा टुकड़ा है जो आप भी तरल जीवामृत मायने
1: मतलब जितनी भी आप चीज बता रहे हैं पूरी जैविक है घरे तैयार कर सका बाजार हूँ कोई विशेष चीज आपने
0: लानी
1: को नहीं पड़े और फसल भी निरोगी वे और स्वास्थ्य खातिर बा बढ़िया वे
0: और सब ज्यादा देखो ना किसान भाई जेब मत भार है जो बिल्कुल कम
1: हो जाए फसल उत्पादन निरोगी और ज्यादा भी वे
0: और आने वाले टाइम में खेत भी ज्यादा निरोगा हुई साफ क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु जीता हमारे मित्र
1: की खत्म
0: नहीं हुई सूक्ष्म जीवाणु
1: मिला
0: बढ़ता जाए घटे को नहीं जितनी बार आप जैविक खाद या जैविक छिड़काव भी उपयोग करा तो भी सूक्ष्म पोषक तत्व कभी कमी आवे तो कौन ना
1: जगह प्रयोग करोड़ी चीजा है वे भया ताई मांडर पूरी बताई तो आपको करा धन्यवाद राम राम शाह
0: राम राम शाह।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो मैं देखो बातचीत करी और करी आप तई पूगती रहा। आपने उड़ी के कोई लोक गीत और भजन रही तो अनिल नागौरी रो गायडो और लोक भजन करा आप तई पूगतो।

तो भाई देखो भजन करियो आप तो पूग तो। और आज मंडी के भाव भी आएडा नागौर मंडी के मायने आज मूंग नीचे नीचे बोल लगी 5,000 ऊपर ऊपर 7,800। तिल काला 8,000 लेर 9,100 रुपया और सफ़ेद तिल 9,000 10,000। यानी ज्वार का भाव बोली शुरू हुई 3,000 4,500 और ग्वार 5,000 5,635 तारा मेरो 4,900 लेर 5,900 और जीरे का जगह नागौर मंडी का भाव है 14,000 शुरू यार 19,500 लास्ट बोली छुट्टी। मेथी दाना मेथी जगह 5,000 लेर 6,000 और इसबगोल 11,000 शुरुआत और लास्ट भाव छुट्टिया 14,400। सौंफ का जगह भाव है 7,000 लेर 11,500 और चनो नागौर मंडी में 4,700 5,300 और अषाढ़ियो 5,000 6,100 रुपया और इणी बांत सिंधी सुए का जगह भाव है 6,000 लेर 7,000। ए नागौर मंडी का आज का भाव जे भाई कोई जींस बचा रखी है तो ई भाव मत ले सके कल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सके। इनके सागे आपने जगह खेती बाड़ी के तेवड़ी वक्त उ पूरा तो आपके जगदीश भाई दिरावशी करा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम FM इंड 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले

0: मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का इलाज आसान नहीं है।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
0: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
1: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी आगे लिखते हैं।
1: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का

0: परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
1: जवानों,
2: जी सर,
1: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
2: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
1: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
3: जी सर।
1: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
3: जी जनाब।
1: हाथ गोला हाथ में लो।
3: ले लिया जनाब।
1: अब पिन रिलीज करो।
4: फेंको,
3: फेंको जनाब।
5: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
0: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
3: ये आदि क्या कर रहा है?
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
6: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
3: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
7: सही में
3: बहादुर सैनिक हो तुम।
5: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
8: May I come in, sir?
6: Yes, come in.
8: Sir.
6: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
8: सर।
6: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
8: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
6: हाँ हाँ, कहो।
8: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
6: ओके। तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
8: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
6: गो अहेड यंग मैन।
8: सर।
5: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
5: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
8: साथियों,
3: ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए

0: कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
1: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
0: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
2: जी जनाब।
3: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
4: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
1: जी सर, हम आपके टैंक को कवर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
1: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर।
1: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
1: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
1: यस सर।
5: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
6: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
5: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निगल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई

0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए, किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग,
4: उमंग, उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं।

FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत दिल से। दोस्तों नमस्कार, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के कुछ गीत। तो आज हमें व्हाट्सएप के जरिए जिन श्रोताओं ने मैसेजेस किए हैं, हम उनकी पसंद पे आपको सुनवा रहे हैं उनकी पसंद के गाने। तो सबसे पहले देखते हैं हमें किसने मैसेज किया है। हमें मैसेज किया है बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर ने। तो आपने सुनना चाहा है फिल्म प्रेम बंधन का ये सॉन्ग मैं तेरे प्यार में

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से, जिसमें आप सोशल मीडिया पर आधारित अपनी फरमाइश पर फिल्म गीत सुनते हैं। तो अगली फरमाइश है हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। आपने मैसेज किया है गांव नथाना पंजाब से, और इसी गीत के लिए, गीत का नाम हम आपको बाद में बताएंगे, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। आपने मैसेज किया है वइंग खेड़ा पंजाब से। आपने सुनना चाहा है फिल्म इश्क पर जोर नहीं का टाइटल सॉन्ग।

दोस्तों, अगले गीत के लिए हमें मैसेज किया है संदीप कालवा ने, अकेली बी नागौर राजस्थान से। और इसके साथ साथ हमें मैसेज किया है इसी गीत के लिए पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म उपकार का ये नगमा, कस्मे वादे प्यार वफा सब।

पति पत्नी और तवाइफ़ के इस गाने के लिए, जिसके लिए हमें मैसेज किया है गुमानदान चारण ने, ग्राम बाराणी नागौर से। और इसके साथ साथ मैसेज किया गया है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा द्वारा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पे फिल्म पति पत्नी और तवाइफ का ये गीत, कहना न तुम ये किसी से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत दिल से। अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने। आप सुनना चाहते हैं फिल्म तकदीर का ये गीत, आइए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम दिल से। इसमें आप भी अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और इसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 9649004762। जी हाँ, इन नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, गाने के बोल और फिल्म का नाम लिख करके हमें भेजें, ताकि हम आपकी पसंद का गीत इस कार्यक्रम में प्रसारित कर सकें। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मैं कहना चाहूँगा, आज की इस खामोश रात में चांद भी जैसे कुछ कहने लगा है, सितारों की महफिल सजी है आसमान में, और दिल पुरानी यादों में बहना लगा है। रात की तन्हाई में अक्सर ये एहसास होता है, कोई अपना दूर होकर भी दिल के पास होता है। चांद की रोशनी में जब यादें मुस्कुराती हैं, तब हर अधूरी मोहब्बत का जिक्र खास होता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दिल से सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे झलकी एक पतने व्रत।

0: प्यार की।
1: बस भी करो, कोई सुनेगा तो कहेगा ये धोबी की नहीं किसी गवैये की दुकान है।
0: उड़ा ले, तू भी मजाक उड़ा ले। अरे देखना, वो तो चानस मिलने की देर है, लोग अच्छों अच्छों को भूल जाएंगे। अपुन का भी नाम होगा छुट्टन कुमार, पिले बैग सिंगर।
1: जो जी में आए करो, प्रेस करने के ढेरों कपड़े पड़े हैं अभी। और हाँ, कोट वालों का तकाजा है, उन पर पहले प्रेस कर दो, मैं आई कपड़े देकर।
0: कोट पर पहले? चलो छुट्टन कुमार, आखिर बंबई में भी तो लोगों को शुरू शुरू में लाइफ में फाइट करना होता है ना।

0: अरे अरे अरे, जेब में है कुछ। लगता है 100 रुपए का पत्ता होना चाहिए। ये डाला जेब में हाथ और ये वारी छुट्टन कुमार की किस्मत, मिला भी तो कागज का टुकड़ा। चलो देखें क्या लिखा है। जाने वफा, शाम का इंतजार है, दिल वाले बाग में जरूर मिलना, सिर्फ तुम्हारे शब्दों में। जाने जिगर।
1: हाय हाय, ये क्या है? हाथ में कौन सा कागज है?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है।
1: फिर दो मुझे।
0: हाँ ये लो ये लो, लेकिन कसम से मैंने नहीं लिखा।
1: अच्छा तो ये लिखा जा रहा है। अरे मेरी किस्मत भी फूट गई। अरे, अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई।
0: अरे अरे अरे भगवान, अरे क्यों बेफिजूल रोए चले जा रही है?
1: मेरी किस्मत।
0: अरे मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है ये?
1: अरे होगा क्या, अरे जो होना तो वो हो चुका है? अब तो प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं।
0: अरे वो चिट्ठी तो इस कोर्ट में से निकली है। अब देख, शादी के पहले तेरी को तो चिट्ठी ऐसी नहीं लिख सका। अपन की किस्मत में सिर्फ दूसरों के खत पढ़ना लिखा था।
1: तो यूं बोलो ना, मेरी तो चाल ही निकल गई थी।
0: अपन तो बस सुन ले, जैसे वो पतिव्रता स्त्रियां होती है ना, वैसे एक पत्नी व्रत वाले हैं और इसीलिए एड्स से बचे रहते हैं।
1: लेकिन ये चिट्ठी कौन से कोर्ट में से निकली?
0: इसमें से? अरे ये काले रंग वाले कोर्ट में से, और क्या।
1: क्या सोचने लगे?
0: सोच रहा हूँ छुट्टन ने भी क्या दिमाग पाया है। वाह वाह, क्या धांसू आइडिया आया है दिमाग में।
1: आए हाय, मैं भी तो सुनूं।
0: देखो ये काले रंग का कोट 11 नंबर वाले वर्मा जी का है ना?
1: हाँ वो तो है, लेकिन
0: लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब छुट्टन कुमार का कमाल देखना।
1: ऐसी क्या बात है, कुछ मैं भी तो सुनूं।
0: ये 11 नंबर वाले वर्मा जी उस रोज बड़े अकड़ रहे थे ना?
1: हाँ, और 3 महीने से अपने रुपए भी दबा कर बैठे हुए हैं।
0: बस तो आज बदला लेने का दिन आ गया है।
1: देखो तुम्हें मेरे सर की कसम, लड़ाई झगड़ा नहीं करना।
0: अरे वैसे तो छट्टन कुमार किसी से नहीं डरते, लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन इस बार ये जंग है दिमाग की। मैं ये चिट्ठी जाकर वर्मा जी की पत्नी को दे देता हूँ, हैं? और कहूंगा कि ये उनके पति के इस काले कलूटे कोट में से निकली है।
1: अरे वाह, वाकई तुम्हारा दिमाग लाखों में एक का होगा।
0: हाँ तो ले संभाल दुकान और मैं देकर आया कोट।
1: हाँ।
2: इस छुट्टन के बच्चे को तो आइंदा से कपड़े देने ही नहीं, अब तक नहीं आया कबख्त।
3: अजी वो आए तब तक तुम कुछ खा पी क्यों नहीं लेते?
2: ओफ, वो तुम्हें खाने की पड़ी है, और यहाँ मेरा जी जल रहा है। आखिर दफ्तर में अफसर हूँ अफसर, मुझे तो समय का पाबंद होना चाहिए ना।
3: जैसे कि समय की पाबंदी दूसरों के लिए तो है ही नहीं।
2: देखो देखो, इस वक्त मैं बहस के मूड में नहीं हूँ।
3: तुम्हारे मूड को सब जानते हैं, हमेशा मुँह फुलाए रहते हो।
0: बाबू जी, अजी कपड़े ले लो।
3: हाँ हाँ ले आओ अंदर।
2: अरे अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैं टावल में हूँ। ऐसा करो मैं भीतर जाता हूँ, फिर तुम मुझे बुलाओ।
3: ठीक है ठीक है।
0: ये रहे बीवी जी कपड़े, और ये कागज इस कोर्ट की जेब में से निकला है।
3: कागज?
0: हाँ।
3: कैसा कागज?
0: ये तो अपन को पता नहीं, अपन तो प्लेबैक सिंगर हैं होने वाले। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है।
3: अरे ये तो चिट्ठी ही है, जरा देखूं तो। जाने वफा, हाय राम किस बेशरम ने लिखा है। शाम का इंतजार है, और दिल वाले बाग में जरूर मिलना, सिर्फ तुम्हारे शब्दों में। जाने जिगर।

0: ठीक है, मैं भी देखती हूँ इन्हें आज।
1: अरे दे गया कपड़े, इस छुट्टन के बच्चे को तो बदलना ही पड़ेगा।
0: बड़ा वक्त लगा रहे थे आज बनने सवरने में, किसी खास जगह जाना है क्या?
1: नहीं बस यूं ही समझो, दफ्तर में आज एक पार्टी है।
0: अच्छा, लेकिन पार्टी का तो तुमने जिक्र ही नहीं किया। थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि दफ्तर को देर हो रही है।
1: हाँ मुझे वाकई देर हो रही है, ये सब दफ्तर की बातें हैं।
0: वो मैं सब समझती हूँ, किसकी बातें हैं?
1: किसकी बातें हैं? क्या मतलब है तुम्हारा?
0: मतलब कुछ नहीं, जरा तुम्हारे सास ससुर को यहाँ आने को कहना पड़ेगा। आखिर वो भी तो आकर देखें कि उनके दामाद क्या गुल खिला रहे हैं।
1: अरे देखो देखो, तुम्हें जो कुछ कहना है ना साफ साफ कहो, यूं घुमा फिरा कर बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा।
0: कौन किसे घुमा फिरा रहा है ये तो तुम ही जानो।
1: देखो देखो मैं कहता हूँ। खैर जाने दो, अभी देर हो रही है। लाओ कोट दो जरा।
0: कोट तो ले लो, लेकिन इसकी जेब में किसी का दिल रखा है।
1: दिल?
0: हाँ हाँ दिल, ध्यान से रखना।
1: हे भगवान, अरे न जाने तुम्हें आज क्या हो गया है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बड़ी देर हो गई है आज। अरे वो पड़ोस के शर्मा जी से लिफ्ट मिल जाती स्कूटर पर, वो भी नहीं मिलेगी, वो भी चले गए होंगे।
0: अब ये तो तुम ही जानो कि कौन किसे लिफ्ट दे रहा है।
1: अरे अब कौन किसे लिफ्ट देगा, खुद के स्कूटर से ही जाना पड़ेगा। आखिर लेट हो ही गया, बड़े साहब जरूर नाराज होंगे। जल्दी से फाइल के कागज तैयार कर लेता हूँ। हाँ फाइल तैयार करके ले चलो।
2: वर्मा बाबू जी, हा? आपको बड़े साहब याद कर रहे हैं।
1: अरे जा रहा हूँ भाई जा रहा हूँ, अभी अभी तो आया हूँ, जरा रुमाल से पसीना तो पहुंच लू। ये क्या गिरा? जरूर इसी फाइल का कागज होगा, इसे उठाकर फाइल में रख देता हूँ। चलो बेटा वर्मा, अब बड़े साहब के सामने देना सफाई लेट आने की। छुट्टन कुमार धोबी तो तुम्हें बचाने से रहा। मैं अंदर आ सकता हूँ सर?
3: यस कम इन।
1: वो बात ये है सर कि
3: हाँ, बस नहीं मिली होगी, मेहमान आ गए होंगे, बीवी को अस्पताल ले जाना पड़ा होगा। मिस्टर वर्मा, दफ्तर में लेट पहुंचने के ये बहाने बहुत पुराने हैं, कोई नई तरकीब सोचो।
1: मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, पहले तो पत्नी को लेकर अस्पताल गया, वहाँ 20 मिनट सुई को गर्म पानी में उबालने में लगे।
3: अच्छा अच्छा।
1: अब आप तो जानते हैं ना सर, आजकल एड्स का खतरा है, एड्स का, और मैं ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता सर। और फिर वो धोबी कपड़े भी तो सर।
3: वो तो ठीक है एड्स से बचना चाहिए, लेकिन कपड़ों का क्या चक्कर है भाई, सभी कपड़े एक साथ धुलने के लिए दे दिए थे क्या?
1: नहीं सर, वो बात यह कि ये कोट दिया था।
3: अच्छा, तो बिना कोट पहने आप ऑफिस नहीं आ सकते, क्यों? मैं पूछता हूँ आखिर आप वक्त पर आना कब शुरू करेंगे?
1: वो बात यह है सर कि
3: क्या बात है? हैं? कोट क्या दफ्तर की यूनिफॉर्म है?
1: नहीं सर, वो आज छोटे साहब की विदाई पार्टी है ना।
3: अच्छा अच्छा ठीक है, आइंदा टाइम से आया कीजिए।
1: यस सर।
3: सुनो वो फाइल कंप्लीट है?
1: यस सर, ये लीजिए।
3: चलो फाइल तो तैयार की।
1: वो बात ये है सर कि मैं लेट भले हो जाऊं लेकिन ऑफिस के काम में देरी नहीं करता सर, और बात ये भी है सर कि
3: मिस्टर वर्मा।
1: यस सर।
3: ये आप फाइल तैयार करके लाए हैं?
1: हाँ सर, कल देर तक बैठकर मैंने इसे पूरा किया है सर।
3: क्या खास पूरा किया था? ये ऑफिस की फाइल है या प्रेम पत्रों का पुलंदा?
1: जी सर, जी नहीं सर।
3: देखिए इसे और पढ़िए, मैं कहता हूँ पढ़िए।
1: जी
3: जरा जोर से पढ़िए।
1: यस सर, लिखा है जाने वफा शाम का इंतजार है।
3: क्या है ये क्या है? आखिर मैं पूछता हूँ ये क्या है? दफ्तर में लव लेटर लिखे जा रहे हैं, हैं? उनकी फाइलें बनाई जा रही हैं, ये दफ्तर है या इश्क का मैदान?
1: ऊपर वाला गवाह है सर, मैं नहीं जानता ये प्रेम पत्र इसमें कब और कैसे आ गया सर।
3: बड़े भोले बनते हो मिस्टर वर्मा, आप क्या समझते हैं दफ्तर में जो कुछ होता है उसकी मुझे खबर नहीं? एक एक का इतिहास मुझे पता है, हिस्ट्री पढ़ी है मैंने, हिस्ट्री समझे?
1: सर बेशक मैं इश्क करता हूँ लेकिन सिर्फ अपनी पत्नी से।
3: फिर ये प्रेम पत्र आसमान से आकर इस फाइल में बैठ गया।

0: मेरा कोई कसूर नहीं है सर।
1: मैं पूछता हूँ फिर ये पत्र आया कहाँ से?
0: मैं नहीं जानता सर, जरूर ऑफिस के किसी आदमी की शरारत है सर। मैं तो सर सभी से कहता आया हूँ,
1: एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना चाहिए वरना एड्स का खतरा रहता है।
0: और सर वो अपना नया क्लर्क है ना, वो नया क्लर्क
1: कौन
0: इधर उधर जाता आता है सर, एक दिन खुद भी एड्स का बीमार होगा और सर हम
1: ठीक है समझाओ उसे।
0: बहुत समझाता हूँ सर, बहुत समझाता हूँ, और मैंने तो ये भी बता दिया कि एक बार एड्स हुआ तो एक वर्ष में 40,000 रुपए की दवाइयों का खर्च समझो, और फिर भी मौत तो सामने ही है एक आध साल में। इससे अच्छा है सर एड्स से बचकर ही रहा जाए। और वो सर वो सड़कों पर आपने तख्ती तो देखी है ना?
1: तख्ती?
0: हाँ
1: कैसी तख्ती?
0: यही कि असुरक्षित यौन संबंध से बचिए और खून चढ़ाने से पहले खून की जांच कराइए।
1: भाई वर्मा ये तो समझ में आता है कि सुरक्षित यौन संबंध होना चाहिए, पर ये खून की जांच क्यों?
0: ताकि ये पता चल सके कि HIV के विषाणु तो खून में नहीं है।
1: और कौन सी तख्ती चाहते हो?
0: सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सर एड्स के मामले में सावधानी ही भली।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन देखो आज ही अपने दफ्तर में भी एक ऐसी तख्ती लटकवाओ।
0: वही दुर्घटना वाली सर?
1: अरे नहीं, उस पर लिखवाइए दफ्तर में इश्किया खतो किताबत की सख्त ममानियत है।
0: अभी बनवा लाता हूँ सर।
1: अरे सुनो वर्मा,
0: हाँ?
1: उस पर लिखवाइए इश्क आदमी को निकम्मा बनाता है। गालिब ने भी तो ऐसा ही कुछ कहा था ना?
0: हाँ कहा तो है सर, लेकिन बुरा न माने तो एक राय अपनी भी दे दूं।
1: हाँ कहिए कहिए।
0: हमें तख्ती पर लिखाना चाहिए परिवार की परिधि में रहिए, एड्स से बचिए।
1: वाह वर्मा जी, कभी कभी आप ठीक कहते हैं। हाँ यही लिखवाइएगा, और हाँ दफ्तर में सभी को कह दीजिए कि आइंदा कोई प्रेम पत्र ना लिखे।
0: अरे नहीं नहीं सर, ऐसा जुल्म मत कीजिए सर।
1: क्यों?
0: वो प्रेम पत्र घर पर तो लिख ही सकते हैं ना?
1: बेशक लिख सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को?
0: या फिर
1: क्या?
0: सिर्फ अपनी पत्नी को।
1: नहीं वर्मा।
2: अभी आप सुन रहे थे विविधा में झलकी एक पत्नी व्रत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
3: से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा दिल्ली पंजाब उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से

0: सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भिल, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
8: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
9: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
10: Against the assessment of
4: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब

0: 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है.
1: लाइक मैट्रिक टन ऑफ इम्पोर्ट हैव रीच्ड द शोर.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि

0: भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे दर्द भरे गीत। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दाग से ये गीत, जिसमें आवाज़ लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है और गीत साहिर लुधियानवी का।

दर्द भरे गीत में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लव स्टोरी से, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में, संगीत आर डी बर्मन का, गीत आनंद बख्शी का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्द भरे गीत। अगला नगमा आपके लिए किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म लावा से। संगीत आरडी बर्मन का है, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

इसी गीत के साथ दर्द भरे गीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अभी आपने गुलाम अली को फिल्म निकाह में सुना। हसरत मुहानी ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया था रवि ने।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

देशमुख को सुना। संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे थे संतोष आनंद ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। हाँ हाँ।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे। जब

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में निकले।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारे लाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारे लाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारे लाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को 4 फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका नहीं मिला।

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदागर।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदर

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

0: में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की ये सांध्यकालीन प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। अब आपसे हमारी भेंट कल सुबह 8:51 पर हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में होगी। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।